0: ఆకాశవాణి వివిధ భారతి కేంద్రం నిలయంలో సమయం 6 గంటలు కాస్తుంది. మరికొద్ది క్షణాల్లో హిందీలో వార్తలు వింటారు.
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अलका सिंह. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को आवश्यकता है. नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को केवल एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि ये युवाओं के भविष्य से जुड़ी है.
2: हमें प्रो पीपल प्रोएक्टिव गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराएं लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है.
1: राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 157वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है. इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित की जाएगी. विदेशों में भी भारतीय मिशनों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों में राष्ट्रपिता को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि महात्मा गांधी का जीवन और उनके आदर्श दुनिया भर में सम्मानित हैं. उन्होंने कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में जारी युद्ध और संघर्ष के माहौल में गांधी जी का शांति और अहिंसा का संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गया है. राष्ट्रपति ने कहा कि भारत 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ रहा है. विकास का लाभ किसी भी नागरिक से न छूटे, इसके लिए संवेदना और समावेशिता के मूल्यों को प्राथमिकता दी जा रही है. पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 125वीं जयंती पर आज राष्ट्र उन्हें भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है. उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में हुआ था, जिसे पहले मुगल सराय के नाम से जाना जाता था. दिल्ली यातायात पुलिस ने आज राजघाट पर गांधी जयंती और विजय घाट पर पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को देखते हुए यातायात पर

0: परामर्श जारी किए हैं। कार्यक्रम की सुगमता तथा यातायात सुचारू एवं सुरक्षित रखने के लिए राजघाट, रिंग रोड और आसपास की सड़कों पर विशेष यातायात व्यवस्था लागू रहेगी। गांधी जयंती के अवसर पर आज देश भर में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। इन सभाओं में ग्रामीण भारत में पंचायती राज को सुदृढ़ करने, सार्वजनिक सेवाओं में सुधार लाने और ग्रामीण जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा होगी। एक रिपोर्ट।
1: ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार इन ग्राम सभाओं के साथ ही जन योजना अभियान सबकी योजना सबका विकास की भी शुरुआत होगी। इस अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायतें वित्तीय वर्ष 2027-28 के लिए जन भागीदारी और तथ्यों के आधार पर अपनी विकास योजनाएं तैयार करेंगी। ये जन योजना अभियान वर्ष 2018 से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जा रहा है ताकि पंचायतें समावेशी और सहभागी विकास योजनाएं बना सके। कक्ष से जया भारती।
0: सरकार ने 15 अक्टूबर से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण की अवधि को घटाकर 15 दिन कर दिया है। भंडारण की सीमा भी 1000 क्विंटल तय की गई है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा है कि त्योहारों के मौसम में जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं को आसानी से चीनी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चीनी भंडारण के नियमों में बदलाव किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो भारतीय नागरिक और फ्लाई दुबई की उड़ान के बहादुर पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार की स्वास्थ्य स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। सऊदी अरब के तबुक स्थित एक अस्पताल में आरंभिक इलाज के बाद अब उन्हें आबुधाबी स्थानांतरित कर दिया गया है। जापान में 20वें एशियाई खेलों में कल भारत ने 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीते। भारत अब तक 10 स्वर्ण, 23 रजत और 33 कांस्य पदक सहित 66 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ఆకాశవాణి వివిధ భారతి కేంద్రం తరతరాల తరగని ఆనందం అలరించే సంపూర్ణ వినోదం. భక్తి సాగరంలో ఓలలాడే దైవిక మార్గం అర్చన క్షేత్రదర్శిని.

0: सुधारों पर चर्चा होगी। एक रिपोर्ट।
1: विकास मंत्रालय के अनुसार इन ग्राम सभाओं के साथ ही जन योजना अभियान सबकी योजना सबका विकास की भी शुरुआत होगी। इस अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायतें वित्तीय वर्ष 2027-28 के लिए जन भागीदारी और तथ्यों के आधार पर अपनी विकास योजनाएं तैयार करेंगी। ये जन योजना अभियान वर्ष 2018 से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जा रहा है ताकि पंचायतें समावेशी और सहभागी विकास योजनाएं बना सके। देश भर की 2,55,000 से अधिक ग्राम पंचायतें अपनी योजनाएं तैयार कर ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड करती हैं। इन ग्राम सभाओं में आम नागरिक और स्थानीय प्रतिनिधि एक साथ बैठकर सरकारी योजनाओं की समीक्षा करेंगे और अपने गांवों के विकास की प्राथमिकताओं को तय करेंगे। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: गुजरात में इस अवसर पर बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य सरकार ने खादी और पॉली वस्त्र के उत्पादन पर 30% विशेष बाजार प्रोत्साहन की घोषणा की है।
2: यह निर्णय प्रधानमंत्री

0: नरेंद्र मोदी के खादी फॉर नेशन, खादी फॉर फैशन, वोकल फॉर लोकल और हर घर स्वदेशी के संकल्प को गति देने के उद्देश्य से लिया गया है, जो 31 दिसंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। इस प्रोत्साहन सहायता का सीधा लाभ उपभोक्ताओं को अधिकृत खादी बिक्री केंद्रों पर छूट के रूप में मिलेगा। आगामी त्योहारों के सीजन में स्थानीय उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए राज्य के प्रमुख शहरों में विशेष खादी प्रदर्शनी सह बिक्री मेलों का भी आयोजन किया जा रहा है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: नागर विमानन मंत्रालय ने भारतीय हवाई अड्डों पर काम करने वाले लोगों के लिए विमानन सुरक्षा प्रक्रियाएं आसान और तेज बनाने के लिए कई सुधार शुरू किए हैं। नई दिल्ली में प्रचालन दक्षता और कामकाज में आसानी के लिए नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के सुधारों पर नागर विमानन सचिव समीर कुमार सिन्हा ने बताया कि इन बड़े बदलावों का उद्देश्य कार्य प्रवाह को डिजिटल बनाना, प्रक्रियाओं को आसान बनाना और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए जवाबदेही आधारित सुशासन की ओर बढ़ना है। मंत्रालय ने बताया कि ब्यूरो ने सुरक्षा मंजूरी के तरीके को आसान बना दिया है। अब सुरक्षा मंजूरी किसी विशिष्ट वर्ग या प्रक्रिया पर निर्भर नहीं होगी, बल्कि विमानन संस्थाओं की 9 पहचानी की श्रेणियों पर लागू होगी। मंत्रालय ने बताया कि ये सुधार इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है। सऊदी अरब ने फ्लाई दुबई के तेल अवीब जा रहे विमान को दुर्घटनाग्रस्त करने के कथित प्रयास के मामले में ओमान के सहयोगी पायलट को संयुक्त अरब अमीरात को सौंप दिया है। जांचकर्ताओं के अनुसार ओमानी सह पायलट को कॉकपिट में भारतीय पायलट स्मित मच्छार पर हमला किया था। इस घटना के बाद बुधवार को विमान को सऊदी अरब के तबुक शहर में आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी थी। विदेश मंत्रालय भारतीय नागरिक और फ्लाई दुबई विमान के बहादुर पायलट कैप्टन स्मित मच्छार की स्वास्थ्य स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है। सऊदी अरब के तबुक में एक अस्पताल में आरंभिक इलाज के बाद अब उन्हें अबू धाबी स्थानांतरित कर दिया गया है। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय राजदूत ने अस्पताल में कैप्टन मच्छार से भेंट कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। विदेश

0: www.rtv.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। उनकी यात्रा जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और सेवा के निरंतर संकल्प से जुड़ी रही है। सेवा और सुशासन की इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में प्रस्तुत है ऐसा ही एक उदाहरण, जिसमें इस सोच को पंबन पुल के जरिए धरातल पर उतारा गया।
2: रामेश्वरम में नया बना पंबन पुल भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है। इसका उद्घाटन पिछले साल 6 अप्रैल को रामनवमी के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था।
3: द न्यू पंबन ब्रिज टू रामेश्वरम ब्रिंग टेक्नोलॉजी एंड ट्रेडिशन टुगेदर। ए टाउन दैट इज थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ओल्ड इज बीइंग कनेक्टेड बाय अ 21st सेंचुरी इंजीनियरिंग वंडर। फॉर मेनी डेकेड्स There was a demand for this bridge. With your blessings, we got the privilege of completing this work. Pamban Bridge supports both ease of doing business and ease of travel.
2: पुराना ऐतिहासिक पंबन पुल श्रीलंका के साथ व्यापारिक संपर्क बढ़ाने के लिए बनाया गया था। 1870 के दशक में शुरू हुए इस पुल का निर्माण लगभग 2 किलोमीटर तक फैला था, जिसमें 143 पिलर थे और इसे 1914 में चालू किया गया था। नए पुल के वर्टिकल लिफ्ट में 72.5 मीटर का सेंट्रल स्पैन है, जो समुद्र में जहाजों के गुजरने के लिए 17 से 22 मीटर ऊपर उठ सकता है। आकाशवाणी से बातचीत में मदुरै डिवीजन के रेलवे अधिकारियों ने बताया कि पुल के आधारभूत ढांचे को सुरक्षित रखने के लिए 3000 टन से ज्यादा लोहे का इस्तेमाल किया गया था। IIT मद्रास और बॉम्बे के विशेषज्ञों ने नवंबर 2024 में इसके डिजाइन की जांच की थी। इस पुल से अरब सागर का शानदार नजारा भी दिखता है। खाड़ी के ऊपर बना यह सबसे लंबा पुल 1988 तक रामेश्वरम और मुख्य भूमि के बीच एकमात्र संपर्क मार्ग था। पुराना पंबन पुल उन बड़े चक्रवातों से भी बच गया था जिन्होंने धनुषकोडी को नष्ट कर दिया था। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं हिमांशु कांडपाल।
0: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज गोवा जा रहे हैं।

0: हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री चौहान पोंडा में एक कार्यक्रम में किसानों और आम नागरिकों से संवाद करेंगे।
1: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज गोवा में गोवा फ्रेश ब्रांड की शुरुआत करेंगे। इस पहल के तहत गोवा में उत्पादित कृषि उपज की ब्रांडिंग और पैकेजिंग की जाएगी। राज्य सरकार ने गोवा के कृषि उत्पादों को बढ़ावा

0: संस्थान का दौरा करेंगे और वहां समीक्षा बैठक करेंगे। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को देश में उपलब्ध ऊर्जा संसाधनों के अधिक विकास से पूरा किया जाना चाहिए। श्री पुरी ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय गोवर्धन योजना का शुभारंभ करते हुए ये बात कही।
2: सरकार ने योजना ऐसी बनाई है जिसमें केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार मिलकर एक नया इकोसिस्टम बनाए, जिसके द्वारा जो सीबीजी प्लांट लगाना चाहते हैं उनको कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए सहायता मिलेगी 2 करोड़ की। क्रेडिट गारंटी भी है एमएसएमईज के लिए, और अगर आप महिला एंटरप्राइज है आपका तो उसकी 20 करोड़ की जगह 25 करोड़ की गारंटी होगी।
1: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए श्री मोदी के विचार बहुत अच्छे हैं। एक सार्वजनिक मंच पर राष्ट्रपति पुतिन ने भारत के कूटनीतिक प्रयासों के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी नियमित रूप से युद्ध समाप्त करने का मुद्दा उठाते हैं। श्री पुतिन ने कहा कि भले ही भारत का रुख इस मामले में तटस्थ है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी बातचीत के जरिए शीघ्र शांति स्थापित करने में गहरी रुचि दिखा रहे हैं। जापान में 20वें एशियाई खेलों में भारत ने महिलाओं की तीरंदाजी रिकर्व टीम स्पर्धा में इतिहास रचते हुए स्वर्ण पदक जीत लिया है। फाइनल में अंकिता भगत, कीर्ति शर्मा और कुमकुम मोहोद की भारतीय टीम ने विश्व चैंपियन और 10 बार के ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया पर रोमांचक जीत दर्ज की। ये भारत का एशियाई खेलों में महिला रिकर्व टीम स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक है। इस पदक के साथ ही भारत अब तक 11 स्वर्ण, 23 रजत और 33 कांस्य सहित 67 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में अगले वर्ष होने वाले क्रिकेट विश्व कप कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। विश्व कप 2 अक्टूबर से 21 नवंबर तक खेला जाएगा। प्रतियोगिता में 14 टीमों के कुल 57 मैच खेले जाएंगे। भारत का पहला मैच 7 अक्टूबर को मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं अलका सिंह।
3: धन्यवाद मुकेश। फ्लाई दुबई के विमान में भारतीय पायलट स्मित मच्छर के अदम्य साहस की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान ने शौर्य गाथा शीर्षक से दिया है कॉकपिट में जानलेवा हमले के बावजूद नहीं टूटा हौसला, भारतीय पायलट स्मित मच्छर की सर्वत्र सराहना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले 9/11 जैसी साजिश नाकाम की। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है भारतीय पायलट स्मित को पूरी दुनिया ने किया सलाम। जनसत्ता के अनुसार फ्लाई दुबई विमान गिराने के प्रयास की जांच शुरू। दैनिक जागरण का शीर्षक है परीक्षा तंत्र में बदलाव जरूरी, यूपीएससी के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया संबोधित, सुभाष चंद्र बोस ने संस्कृत में दी थी सिविल सेवा परीक्षा। अमर उजाला के अनुसार मोदी ने कहा अब सरकार माई बाप नहीं, नागरिक देवो भव। पंजाब केसरी ने वित्त मंत्रालय का बयान दिया है वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच मजबूत बनी भारतीय अर्थव्यवस्था, दूसरी तिमाही में 7.3% वृद्धि का अनुमान, जीएसटी संग्रह 2,03,000 करोड़ रुपए के पार, विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि 7 माह के उच्च स्तर पर। लोक सत्य की सुर्खी है महानदी विवाद पर दिल्ली में बड़ा मंथन, समाधान की राह में बनी सहमति। गृह मंत्री की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच हुई उच्च स्तरीय बैठक। राजस्थान पत्रिका ने तरंग शक्ति 2026 शीर्षक से दिया है तेजस संग उड़ान, फ्रांसीसी मेजर जनरल बोले याद आया मिराज 2000। जोधपुर एयरबेस में भारत और फ्रांस के एयरक्रू ने साझा किए ऑपरेशनल अनुभव, रफाल की हवा में ईंधन भरने की प्रक्रिया भी देखी। एशियाई खेलों पर दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है ग्रीको रोमन कुश्ती में 64 साल बाद रजत पदक, कभी दूध बेचते थे पानीपत के सिवाच, आज चांदी से चमके। सेलिंग में प्रिंस और मनु ने जीता रजत, बाढ़ में पिता को खोया अब पानी पर ही रचा इतिहास। पत्र के अनुसार हॉकी में पाकिस्तान को हरा कर भारत की नजरें गोल पर, क्रिकेट में पाक से होगा फाइनल मुकाबला।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। गांधी जयंती पर देश भर में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन। नागर विमानन मंत्रालय ने सुरक्षा प्रक्रियाओं को सरल और तेज बनाने के लिए कई सुधारों की शुरुआत की। सऊदी अरब ने तेल अवीव जा रहे फ्लाई दुबई विमान में हमला करने वाले ओमान के सहयोगी पायलट को संयुक्त अरब अमीरात को जांच के लिए सौंपा। बहादुर भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार उपचार के लिए अबू धाबी के अस्पताल में भर्ती। भारत की स्मिथ के स्वास्थ्य पर लगातार निगरानी।

0: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, यूक्रेन संघर्ष का स्वीकार्य समाधान खोजने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास बहुत अच्छे विचार। और भारत ने जापान में एशियाई खेलों में महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay, the headlines. Nation pays homage to father of the nation Mahatma Gandhi and former Prime Minister Lal Bahadur Shastri on the birth anniversary today. Special Gram Sabhas to be convened across the country on the occasion of Gandhi Jayanti.

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती है दिल की सुबह।
0: तो आप सब जुड़िए, सुनिए दिन में 2:30 बजे से 4 बजे तक और शामिल होइए विविध भारती की सालगिरह के जश्न में।
3: नाची गाए सबके मन बहलावा रे भैया।
4: विविध भारती की सालगिरह पर 3 अक्टूबर को होगा एक खास जश्न। राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही एक रंगत है। और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंग कर्म की बहुमुखी कलाकार इला
5: आरुण।
4: तो सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियाँ और मनाइए विविध भारती की सालगिरह का ये खास जश्न हमारे साथ। तारीख याद रखिएगा, 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक विविध भारती की सालगिरह पर इला अरुण होंगी लाइव हमारे साथ।
6: कार्यक्रम जारी रहेगा संतराल के बाद।

अभी वर्मन की आवाज में आनंद बख्शी का लिखा फिल्म शोले का गाना आपने सुना और ये प्रोग्राम की आखिरी पेशकश दीपाली सहाय की आवाज, फिल्म का नाम मैं वापस आऊंगा।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही क्षणों में होगा कार्यक्रम आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है।
0: हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए।
1: आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा, ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ आ आ होता है। और एक दिन मैं ये आ आ आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपने गाड़ी में बैठ के, ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मीम साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या, क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा नहीं नहीं तू गाड़ी चला।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

आज एक ऐसी अभिनेत्री का जिक्र है जिन्होंने 1960 और 70 के दशक में हिंदी सिनेमा को अपनी खूबसूरती और अभिनय से पर्दे में एक चमक पैदा की, उसे रोशन किया। ये दो दशकों तक सबसे चर्चित और हिंदी फिल्मों की सफलतम नायिका रहीं। भारतीय सिनेमा में इनके योगदान के लिए भारत सरकार ने इन्हें 1992 में पद्मश्री से सम्मानित किया।

अभिनेत्री आशा पारेख का जन्म 2 अक्टूबर 1942 को हुआ। आशा पारेख की माताजी ने इन्हें शास्त्रीय नृत्य सीखने के लिए बहुत ही कम उम्र में भेजना शुरू कर दिया था और आपने कई गुरुओं से नृत्य सीखा जिसमें पंडित बंसीलाल भारती भी शामिल हैं। जहां तक आशा पारेख के फिल्मी करियर की शुरुआत की बात है तो आपने बेबी आशा पारेख के नाम से सन 1952 की बिमल रॉय की फिल्म माँ से शुरुआत की। फिल्म में लेने के पहले इस निर्देशक ने एक मंचीय कार्यक्रम में नृत्य करते देखा था और फिर एक बाल कलाकार के रूप में बेबी आशा को फिल्म में लिया। फिर दोबारा 1954 की फिल्म बाप बेटी फिल्म के लिए भी बेबी आशा को आपने अनुबंधित किया था। बाद की फिल्मों की असफलता ने बेबी आशा को दुखी कर दिया। बाल कलाकार के रूप में आपने कुछ एक और फिल्में भी की जिसकी वजह से इनको स्कूली शिक्षा त्यागनी पड़ी। आशा पारेख की उम्र 16 रही होगी जब इन्होंने दोबारा अभिनय के क्षेत्र में

अपनी प्रतिभा आजमाने की सोची। बरसन 1959 की विजय भट्ट की फिल्म गूंज उठी शहनाई में नायिका के रूप में आप नहीं चुनी गई। इनकी जगह अभिनेत्री अमिता ने वो भूमिका निभाई थी। आशा पारेख को फिल्मकार ने यह कहकर रिजेक्ट किया था कि इनमें स्टार मटेरियल नहीं है, जबकि 8 दिनों बाद ही निर्माता सुबोध मुखर्जी और लेखक निर्देशक नासिर हुसैन ने आशा पारेख को हीरोइन के रूप में 1959 की फिल्म दिल दे के देखो में शम्मी कपूर के साथ कास्ट किया और ये फिल्म सफल रही और आशा पारेख को इस फिल्म ने स्टार बना दिया।

दिल दे के देखो की सफलता ने फिल्मकार नासिर हुसैन और आशा पारेख की जोड़ी बना दी, जिससे इन्होंने साथ साथ 6 फिल्में की जो काफी सफल रही। ये फिल्में हैं 1961 की देवानंद के साथ जब प्यार किसी से होता है।

सन 1966 की विजय आनंद द्वारा निर्मित म्यूजिकल थ्रिलर जिसके निर्माता थे नासिर हुसैन। फिल्म थी तीसरी मंजिल।

0: और फिर 1971 में आई आशा पारेख और जितेंद्र की ताहिर हुसैन द्वारा निर्मित, नासिर हुसैन द्वारा लिखित निर्देशित फिल्म कारवां, और फिर सन 1984 की मंजिल मंजिल में आशा पारेख ने एक केमियो रोल किया था। लेकिन इन छह फिल्मों ने जहां नासिर हुसैन और आशा पारेख की फिल्मी केमिस्ट्री को सफल बनाया, वहीं हिंदी सिनेमा को भी कलात्मक ढंग से परिष्कृत किया, असरदार बनाया।
1: कितना प्यारा वादा है इन मतवाली आँखों का, इस मस्ती में सूझे ना क्या कर डालूं हाल, मोहे संभाल।

हिट फिल्मों की हिट नायिका जिन्हें हम आशा पारेख कहते हैं, फिल्मालय स्टूडियो की शशधर मुखर्जी द्वारा निर्मित निर्देशित दिल देके देखो से फिल्म दर्शकों और समीक्षकों ने मान लिया कि अ स्टार इज बॉर्न। बात की सिल्वर जुबली गोल्डन जुबली फिल्मों ने इन्हें सर्वोत्कृष्ट हिट गर्ल के रूप में स्थापित किया। इसी नाम से आशा पारेख ने अपनी ऑटोबायोग्राफी खालिद मोहम्मद के साथ मिलकर लिखी द हिट गर्ल।

बचपन से ही सीखी नृत्य कला इनकी अभिनय ख्याति को देश विदेश में बढ़ाने में सहायक रही। अभिनय के अलावा आशा पारेख अपने सामाजिक उत्थान के कार्यों के लिए भी जानी जाती है। 1988 से 2001 तक सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन सेंसर बोर्ड की आप अध्यक्ष रहीं, सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन से भी आप संबद्ध रहीं और फिल्म इंडस्ट्री वर्कर्स, तकनीशियन और एक्टर्स के हितों की रक्षा के लिए बने संगठनों से भी आप जुड़ी रहीं। बाद के वर्षों में आप टीवी के कोरा कागज और पलाश के फूल जैसे धारावाहिक की निर्माता निर्देशक भी बनी। चलिए इन बातों के बाद अब फिर से चलते हैं हिट गर्ल की उन फिल्मों की ओर जिसमें आशा पारेख ने ग्लैमर गर्ल, उत्कृष्ट नृत्यांगना और टॉम बॉय जैसे किरदारों को बखूबी निभाया था। शक्ति सामंत की फिल्म पगला कहीं का में आशा पारेख ने डॉक्टर शालिनी का किरदार निभाया था।

1971 की म्यूजिकल ड्रामा फिल्म कटी पतंग में आपने काम किया, जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। आशा पारेख की जिद्दी फिल्म भी काफी मशहूर रही और जिसमें ये गाना उनका काफी मशहूर रहा।

कई निर्माता निर्देशकों ने कई बार आशा पारीख को अपनी फिल्म में कास्ट किया, जिसमें विजय आनंद और मोहन सहगल प्रमुख हैं। अपने हिंदी फिल्मी करियर की

स्वतंत्रता के दौर में आशा पारेख ने अपनी मातृभाषा गुजराती में भी फिल्में की, जिसमें 1963 की फिल्म अखंड सौभाग्यवती बड़ी हिट फिल्म थी। पंजाबी और कन्नड़ फिल्मों में भी आपने अभिनय किया। हिंदी की आन मिलो सजना इनकी कई लोकप्रिय फिल्मों में से एक रही।

0: दो बदन 1966 की, 1969 की चिराग, 1978 की मैं तुलसी तेरे आंगन की जैसी फिल्मों में आपके अभिनय को काफी सराहा गया। फिल्म भरोसा, आए दिन बहार के, उपकार, शिकार, कन्यादान, आया सावन झूम के जैसी 60 के दशक की फिल्में आशा पारेख के अभिनय से सजी थी।
1: जान

मेरा गांव मेरा देश 1971 की एक्शन ड्रामा फिल्म, जिसे निर्देशित किया था राज खोसला ने, नायक धर्मेंद्र के साथ आशा पारेख की ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इस फिल्म में जहां आशा पारेख अंजू बनी थी, वहीं विनोद खन्ना ने डाकू जब्बर सिंह का रोल अदा किया था। इस फिल्म के गीतों ने भी धूम मचाई थी।

फिल्म नादान, समाधि, राखी और हथकड़ी, हीरा, अनजान राहें, रानी और लाल परी, जख्मी, उधार का सिंदूर जैसी फिल्मों के साथ साथ 1970 के दशक में आई आशा पारेख अभिनीत फिल्म मैं तुलसी तेरे आंगन की में एक कुलीन ठाकुर राजनाथ सिंह चौहान के प्रेम तुलसी का किरदार आपने निभाया था, जिसमें राजनाथ के बेटे अजय को जन्म देने के बाद तुलसी अपना जीवन राजनाथ की पत्नी के लिए बलिदान कर देती है।

सन 1980 के दशक में बिन फेरे हम तेरे, सौ दिन सास के, बुलंदी, कालिया, हथियार और बंटवारा जैसी फिल्में और फिर 1990 के दशक में प्रोफेसर के पड़ोसन, भाग्यवान और 1994 की घर की इज्जत और 1995 की आंदोलन। 1995 के बाद से ही आशा पारेख ने फिल्मों में अभिनय करना बंद कर दिया, फिर कुछ काम टीवी के लिए किया। वर्तमान में आप अपनी डांस एकेडमी और सांताक्रूज में स्थित आशा पारेख हॉस्पिटल पर ध्यान दे रही हैं। जाहिर है अपनी उपलब्धियों की, सम्मानों की, फिल्मों की, अनुभवों की और यादों के साथ अपनी आप निजी जिंदगी जी रही हैं अपने ढंग से, जो कि महत्वपूर्ण है। लेकिन जहां तक फिल्मी दर्शकों की बात है, आशा पारेख जी के फैंस की बात है, तो आशा जी आज भी उनके लिए द हिट गर्ल है।

0: आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित था आशा पारेख पर, आलेख और स्वर जी शाम का, और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: देश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सत्य और अहिंसा में महात्मा गांधी का अटूट विश्वास, न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और हर व्यक्ति की गरिमा में उनका गहरा विश्वास मानवता को प्रेरित करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी युगों में बापू के आदर्श मानवता के लिए पथ प्रदर्शक बने रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर विजय घाट स्थित समाधि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, किरेन रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल, जितेंद्र सिंह और एल मुरुगन ने आज नई दिल्ली स्थित संविधान सदन में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन, कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कई सांसद, संसद के वरिष्ठ अधिकारी और विद्यार्थियों ने भी दोनों महान नेताओं को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। आज के दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान तक आगे बढ़ाया है। विदेश मंत्रालय भारतीय नागरिक और फ्लाई दुबई विमान के बहादुर पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार की स्वास्थ्य स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। सऊदी अरब के तबुक में एक अस्पताल में आरंभिक उपचार के बाद अब उन्हें अबू धाबी भेज दिया गया है। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय राजदूत ने अस्पताल में कैप्टन मच्छार से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर कैप्टन स्मिथ मच्छार की वीरता और साहस को सलाम किया। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी में 11 मेट्रो स्टेशन अगले निर्देश तक बंद रहेंगे। इनमें जनपथ, पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय, राजीव चौक, सेवा तीर्थ, मंडी हाउस, लोक कल्याण मार्ग, आईएनए, चावड़ी बाजार, रामकृष्ण आश्रम मार्ग और नई दिल्ली स्टेशन शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस, आईएनए, नई दिल्ली और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर मेट्रो की इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। जापान एशियाई खेलों में भारत ने बाजी में स्वर्ण पदक जीता। 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहाइन ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। लवलीना ने चीन की बाओ जिए को हराकर भारत के लिए महिला मुक्केबाजी में 12 साल बाद स्वर्ण पदक जीता। भारतीय महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। रिकर्व मिक्स्ड टीम तीरंदाजी में भारत ने रजत पदक जीता। कुमकुम महोद और धीरज बोमा देवरा की जोड़ी ने चीन से 3-5 से हारने के बाद रजत पदक हासिल किया। भारत की नेत्रा कुमानन ने एशियाई खेलों में महिला डिंगी नौकायन स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। पहलवान सुजीत कलकल ने ओलंपिक चैंपियन को हराकर एशियाई खेलों के 65 किलोग्राम फाइनल में जगह पक्की की। भारत पदक तालिका में 70 पदक के साथ छठे स्थान पर पहुंच गया है। इनमें 12 स्वर्ण, 24 रजत और 34 कांस्य पदक हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी विविध भारती केंद्रम स्टूडियो समयं 12 గంటల దాటి 5 నిమిషాలు అమృత గీతం కార్యక్రమానికి స్వాగతం సుస్వాగతం అంటుంది మీ రేడియో సఖి అనుపమ. అక్షరం ఒక అనుభూతి, అక్షరం ఒక ఆయుధం, అక్షరం ఒక ఆనందం. మేలెన్నిక గల అక్షరాలతో పేరెన్నిక గల రచయితల కలం నుంచి జాలువారిన కొన్ని అమృతగీతాలు ఈ కార్యక్రమ ప్రత్యేకత. మరి అనువాద చిత్రగీతాల బ్రహ్మగా పేరొందిన రాజశ్రీగారు రాసిన పద్మవ్యూహం చిత్రగీతం గుర్తుందా? కన్నులకు చూపందమని పాటకే తెలుగందమంటూ అందానికి సరికొత్త నిర్వచనాలు పలికే ఈ హృదయగానం మనందరికోసం.

0: हेलो सहेली कार्यक्रम सुनने वाली हमारी सभी सखियों को चंचल वर्मा का नमस्कार। सखियों, बड़ी शिद्दत से जब हम किसी काम की शुरुआत करते हैं और लगातार प्रयत्न करते हैं तो कई बार हमें कामयाबी मिलती है, लेकिन कभी कभार हम थोड़े निराश भी हो जाते हैं। लेकिन हमारी हर कोशिश हमें सबक जरूर देती है कि हमें हारना नहीं है बल्कि इन कोशिशों को जारी रखना है, कामयाबी तो तभी मिलेगी। तो आज भी हमारी सखियां अपने दिल की बात हमसे कहना चाहती हैं और वो कोशिश कर रही हैं कि उनका कॉल लग जाए। देखते हैं सबसे पहले किस सखी का कॉल हमारे कार्यक्रम में जुड़ गया है। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली मैम।
0: नमस्ते, बताइए कौन सी सखी हमसे जुड़ी हैं इस समय फोन कॉल पर।
1: मोहिनी बैगा बात कर रही हूँ।
0: मोहिनी जी, कहाँ से कॉल लगाया है आपने?
1: मैं तो प्रदेश शहडोल से लगाई हूँ।
0: शहडोल से
1: जी, बहुत सालों के बाद कॉल लगा है मैम। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि विविध भारती से बात हो रही है।
0: जी, बहुत सी सखियां हैं जो इस समय कोशिश करती रहती हैं कि उनका कॉल लग जाए, लेकिन इतनी सारी सखियां क्योंकि एक साथ में कोशिश कर रही होती हैं तो लाइनें व्यस्त हो जाती हैं, लेकिन हमें भी इस बात की खुशी है कि आज आपका कॉल कनेक्ट हुआ है। बताइए, अपने बारे में कुछ बताना चाहती हैं हमें?
1: जी नहीं मैम, मैं हाउसवाइफ हूँ, घर के काम करती हूँ। मध्य प्रदेश में बहुत सारा देखने के लिए चीज है।
0: आपके घर में और कौन कौन है?
1: मम्मी पापा हैं, भाई बहन हैं।
0: बताइए, विविध भारती के कौन से कार्यक्रम आपको सबसे ज्यादा पसंद आते हैं?
1: हेलो सहेली, हेलो फरमाइश, मन चाहे गीत और उजाले उनकी यादों की और आज के मेहमान।
0: जी,
1: बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो मैं पसंद करती हूँ।
0: आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मुस्कान फिल्म का गाना सुनना है, जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता रात नहीं होती।
0: तो मोहिनी जी, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत जो है मुस्कान फिल्म से। आनंद लीजिए इस गीत का।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली।
0: नमस्ते सखी। बताइए आप कहाँ से बोल रही हैं और क्या नाम है आपका?
1: हमारा नाम निर्मला गिरी है, हम मयूरभंज उड़ीसा बारीपदा से बोल रहे हैं।
0: अपने बारे में कुछ बताइए निर्मला जी, आप क्या करती हैं?
1: हम तो हाउसवाइफ हैं, लेकिन कभी कभी सिलाई का मशीन है, सिलाई कर लेते हैं। पति है जो लाइन का कंट्रैक्टरी करते हैं,
0: जी
1: और एक बच्ची है 8 क्लास में, CBSE में पढ़ती है 8 क्लास।
0: जी
1: लेकिन हमारा एक दोस्त है राउरकेला शक्तिनगर में,
0: जी
1: तो उसको हम बहुत याद करते हैं, लेकिन उसका नंबर नंबर कुछ नहीं है हमारे पास, लेकिन हम हर वक्त उसको याद करते हैं। और रेडियो सुनना वो सहेली ने मुझे सिखाया। जब उसका घर हम जाते थे,
0: जी
1: माना कि हमसे वो सीनियर था, लेकिन एक ही स्कूल में पढ़ते थे, बहुत दोस्ती थी। वो हमको रेडियो सुनना ना सिखाया, हेलो सहेली सब कुछ सिखाया। उसको हम बहुत याद करते हैं, लेकिन उसका नंबर नंबर कुछ नहीं है। हमारा एक ही सपना था जो वो भी रेडियो सुनती है, उसके पास वो मेरा याद पहुंचाना था, तो उसको हम बहुत याद करते हैं। लेकिन उसके नाम से गीत, सिर्फ तुमका एक मुलाकात जरूरी है, सर उसको सुनाना।
0: निर्मला जी, आप बहुत भावुक हो रही हैं अपनी दोस्त को याद करके, और उन्होंने ही आपको रेडियो सुनना सिखाया, आपको बताया सुनने हैं कौन कौन से कार्यक्रम, तो वो भी ज़रूर आपका कार्यक्रम सुन रही होंगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और अगर आपकी आवाज़ वो सुनेंगी तो वो आपको ज़रूर संपर्क करने की कोशिश करेंगी, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आपको आपकी दोस्त, जिसे आप बहुत याद करती हैं, तहे दिल से याद कर रही हैं, वो आपको मिल जाए। और आज जो गीत आप सुनना चाहती हैं, ये भी आपने समर्पित किया है अपनी उसी दोस्त के नाम।
1: हाँ जी,
0: आपको सुनवाते हैं सिर्फ तुम फिल्म का, आपकी पसंद का ये गीत जो आपने समर्पित किया है अपनी दोस्त को।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली मैम, ग्राम
0: नमस्ते। बताइए कौन सी सखी हमसे बात कर रही हैं?
1: कन्या निखर से कामनी पटेल
0: कामिनी पटेल बात कर रही हैं।
1: जी। मैम
0: अपने बारे में कुछ बताइए
1: सिलाई मशीन करती हूँ, वो सखी सहेली कार्यक्रम सुनती है
0: जी। आप बताइए आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं कामिनी जी?
1: मैम जी। उड़ जा काले कावा
0: गदर फिल्म का गाना आपको सुनना है, उड़ जा काले कावा।
1: जी।
0: आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का गीत।

0: अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं लेकर सखियों का मनपसंद कार्यक्रम हेलो सहेली, और शुरू करते हैं सखियों के फोन कॉल का सिलसिला। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: कौन सी सहेली हमारे साथ जुड़ी है हम जानना चाहेंगे। अपना नाम बताइए और आपने कहाँ से कॉल किया है ये भी बताइए।
1: जी मेरा नाम रूही है, मैंने पंजाब से फोन किया है।
0: पंजाब के कौन से शहर में आप रहती हैं रूही जी?
1: जी मैं मोहाली में रहती हूँ।
0: मोहाली के बारे में कुछ बताइए, कैसा शहर है?
1: जी बहुत अच्छा शहर है पंजाब का है,
0: जी
1: चंडीगढ़ के पास लगता है।
0: और चंडीगढ़ के आसपास जो भी शहर है वहाँ पंजाब में तो वैसे भी ठंड बहुत पड़ती है, और अब मौसम में जब बदलाव आने की शुरुआत हो रही है तो बताएं
1: जी
0: क्या ठंड
1: हाँ
0: पड़ने की शुरुआत हो रही है अभी?
1: हाँ जी जी मौसम एक दो दिनों में ही बदला है, बहुत अच्छा हो गया है, ना
0: जी
1: गर्मी ना सर्दी।
0: तो अभी ये जो गुलाबी सी ठंडक आने लगी है ये बड़ा
1: जी
0: खुशगवार मौसम हो रहा है वहाँ का।
1: जी मैम हाँ जी
0: और आप क्या करती हैं रूही जी?
1: जी मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ और अभी फ्री पीरियड है।
0: अच्छा, तो फ्री पीरियड है इसलिए आपको मौका मिल गया कि आपने हमसे,
1: मौका मिल गया और आज मैंने पहली बार ही ट्राई किया है और मेरा फोन लग गया।
0: ये तो बहुत ही बड़ी खुशनसीबी की बात है। कई सखियां
1: जी
0: बहुत समय तक इंतजार करती रहती हैं और क्योंकि
1: बिल्कुल
0: लाइनें व्यस्त होती हैं तो उनका फोन नहीं लग पाता,
1: बिल्कुल
0: तो आपको
1: जी
0: इसके लिए हम बधाई देना चाहेंगे कि पहले प्रयास में ही आपका कॉल लग गया है।
1: हाँ जी शुक्रिया जी। मैं तो
0: और
1: बहुत फैन हूँ जी विविध भारती की, बचपन से ही,
0: जी
1: जब हम पढ़ते थे और आज हम पढ़ाने लग गए हैं तब से ही।
0: तो पढ़ते समय भी और आज पढ़ाते समय भी रेडियो
1: बिल्कुल
0: का
1: जी,
0: साथ
1: पढ़ते
0: बना
1: समय
0: हुआ
1: जी
0: है।
1: प्रैक्टिकल फाइल बनाते थे तब तक मेरे मम्मी जागते थे, और ये हवा महल छाया गीत तो मेरे मोस्ट फेवरेट थे उस टाइम भी
0: और आज कौन से कार्यक्रम हैं जिन्हें आप सबसे ज्यादा पसंद करती हैं?
1: जी। तो यही हर रोज सुरीला सफर, चलो सुन नहीं पाते स्कूल के टाइम में, बट
0: जी,
1: सखी से ही घर पहुंचते ही सुन लेती हूँ।
0: तो जिस दिन छुट्टी होती है स्कूल की उस दिन आप सुरीला सफर भी सुन लेती होंगी।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल, और यहाँ भी जाकर सेट हो फिर तो सुन ही लेते हैं, आधा प्रोग्राम तो सुन ही लेते हैं।
0: तो जब स्कूल में आप होती हैं तो मोबाइल पर सुनती हैं?
1: जी जी बिल्कुल, अभी भी मोबाइल पे ही सुनती हूँ।
0: आप कितने समय से स्कूल में पढ़ाने का काम कर रही हैं?
1: हो गए 10 साल तो हो ही गए
0: तो पढ़ाना कैसा लगता है आपको?
1: जी, मुश्किल ही है। इंटरेस्टिंग भी है, मुश्किल भी है।
0: बिल्कुल। और अपने इंटरेस्ट का अगर हम कोई काम करते हैं तो कितना

0: भी मुश्किल हो उसमें मजा जरूर आता है।
1: जी मजा जरूर आता है, बच्चों में जी लग जाता है।
0: और बच्चे भी कई बार अपनी बातों से हमें कुछ ना कुछ सिखा देते हैं
1: जी,
0: चीज।
1: मम्मी आपके बहुत फैन हैं, बचपन से सुनते आए हैं, उन्हीं
0: जी
1: की बदौलत ही हम ये विविध भारती सुन सुन के बड़े हुए हैं।
0: जी और स्कूल में जब हम पढ़ाते हैं तो एक चीज जो हमें सबसे ज्यादा सीखने को मिलती है वो होता है धैर्य। छोटे बच्चों को पढ़ाते समय धैर्य रखना बहुत जरूरी होता है।
1: जी बिल्कुल
0: तो रूही जी बताइए, आज कौन सा गीत आपको सुनवाएं?
1: जी, आप लता जी का सुना दीजिए, मिला है किसी का झुमका, परख फिल्म से।
0: परख फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं, मिला है किसी का झुमका।

0: హలో సహేలి,
1: హలో
0: నమస్తే.
1: దీదీ, జిల్లా సాగర్ ఎంపీ మధ్యప్రదేశ్ గ్రామ కనేరా నిఖర్ సే సులోచనా కుర్మీ బాత్ కర్ రహే హో దీదీ?
0: సులోచనా జీ,
1: జీ దీదీ, పహలీ బార్ కాల్ లగా తో దీదీ, బహుత్ ఖుషీ హో రహా దీదీ, హమారే యహాన్ సే బహుత్ సి సఖియా కాల్ కర్తీ హై దీదీ.
0: జితనీ ఖుషీ
1: క్యా దీదీ?
0: ఆప్కో హై ఉత్నీ ఖుషీ హమే భీ హై. తో బతాయే సులోచనా జీ, ఆప్ క్యా కర్తీ హై?
1: దీదీ ఘర్ పే రహతే హై, దీదీ ఘర్ కా కామ్ కర్తే హై, దీదీ మమ్మీ పాపా హై హమారే, तो वो दीदी खेती किसानी करते हैं, हम तो दीदी घर में काम करते हैं, जितना भी बनता है अपने मम्मी पापा का साथ देते हैं. दीदी पढ़ाई तो हमने नहीं कर पाई दीदी ज्यादा, दीदी 10वीं तक हमने पढ़ाई की, उसके बाद क्या हुआ दीदी, हमारे साथ एक मतलब यहाँ पंडापुरा में पढ़ती थी दीदी, हम सागर में
0: जी.
1: तो दीदी हमारी एक साल जो तबीयत डाउन हुई थी, तो फिर दीदी हमारे पापा मम्मी ने फिर भेजा ही नहीं दीदी स्कूल.
0: तो इसके अलावा अगर आप चाहती हैं तो घर पर रहकर भी पत्राचार माध्यम से आप अपनी परीक्षाएं दे सकती हैं और अपनी शिक्षा
1: जी
0: पूरी कर सकती हैं. अभी तो ऐसे
1: हाँ
0: बहुत
1: जी
0: सारे माध्यम हैं जिसमें स्कूल और कॉलेज जाए बिना आप शिक्षा अपनी पूरी कर सकती हैं.
1: जी दीदी करेंगे दीदी, अगर बनेगा प्रयास तो प्रयास तो करेंगे दीदी हम.
0: जी, और आपके क्या क्या शौक हैं सुलोचना?
1: दीदी जी, हमें रेडियो सुनने का बहुत शौक है दीदी, बचपन में हमारे मम्मी पापा सुनते थे, जब आपके यहाँ से वो कार्यक्रम आता था दीदी, एक वो सुनती थी बहुत, SMS की बहाने भी थी, इसके तरह 12 बजे आता था वो,
0: हाँ
1: तो दीदी वो सुनते थे, वो दीदी सखी सहेली, तो हमारी हमारे गांव पे हमारी मम्मी और बहुत सी सखियां मतलब साथ में बैठ के सुनती है दीदी.
0: अच्छा, तो सुलोचना जी, आपको गानों के कार्यक्रम

0: ज्यादा पसंद आते हैं या किसी और तरह के एक प्रोग्राम सुनती हैं?
1: दीदी हमें तो सखियों की बातें अच्छी लगती है, गाना तो लगती है दीदी, जैसे हेलो सहेली है और सखी सहेलियों में जो आप लोग दो दीदी आती है वो अच्छी अच्छी बातें बताती है पकवान के बारे में कि कैसे बना कुछ भी, मतलब ये जानकारी देती हूँ आप लोग।
0: आप सिर्फ सुनती हैं या कुछ बनाती भी हैं उन पकवानों में से?
1: दीदी बनाते भी है दीदी, हम बना लेते हैं
0: जी अच्छा, अब बताइए कि आज गाना कौन सा सुनवा दें आपको?
1: दीदी, मूवी का नाम है वीरजारा
0: जी
1: और गाने के बोल है ऐसा देश है मेरा।
0: जी आपको सुनवाते हैं वीरजारा फिल्म का आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली
0: बताइए आप कौन सी सखी बात कर रही हैं हमसे।
1: जी। मैम मैं पूनम बात कर रही हूँ कानपुर उत्तर प्रदेश से। मैम कैसी हैं?
0: मैं बहुत अच्छी हूँ पूनम जी, आप कैसी हैं?
1: मैं बहुत बढ़िया हूँ मैम। आज आपसे बहुत समय बाद और यूँ कहेंगे कि बहुत अरसे बाद बात हो रही है और पहली बार बात हो रही है इस कार्यक्रम में।
0: तो इस कार्यक्रम में आज पहली बार आप बात कर रही हैं, बहुत अरसे बाद आपका फोन लगा है। इस बात की जितनी खुशी आपको होती है हमें भी उतनी ही खुशी होती है। अपने बारे में कुछ बताइए पूनम
1: जी मैम मुझे बहुत खुशी हो रही है। और चंचल मैम मैंने आपको सुना है विविध
0: जी।
1: भारती में और बहुत अच्छी आपकी प्रस्तुति रहती है। और मैम मैं ऑनलाइन जॉब करते हैं और मेरा जॉब भी रहता है और आप रेडियो से मैं जुड़ी रहती हूँ। गीत संगीत से बहुत ज्यादा मेरा जुड़ाव है
0: तो आज कौन सा
1: जी।
0: गीत सुनना चाहती हैं पूनम जी?
1: मैम आज गीत सुनाइएगा तेरे चाहत के सिवा और कोई मेरी चाहत नहीं, ये गाना अनुराधा पौडवाल जी के बाद में सुनना है। और मैम हेलो सहेली कार्यक्रम, हेलो फरमाइश और जय माला और विविध भारती के सभी कार्यक्रम से मैं जुड़ी रहती हूँ और मैं जरूर से सुनती हूँ क्योंकि मुझे विविध भारती सुनना बहुत अच्छा लगता है।
0: तो जब आप जैसे श्रोता हमारे साथ जुड़ते हैं तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है पूनम जी, और आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गाना।

0: सखियों अंतराल हुआ पूरा और हम फिर से फोन लाइन के जरिए जुड़ जाते हैं अपनी सहेलियों के साथ। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: नमस्ते सहेली, बड़ी चहक है आपकी आवाज में, आप खुश हैं फोन लग गया तो आपका?
1: हाँ, बहुत ही ज्यादा खुश हूँ क्योंकि आज चंचल जी से मेरी बात हो रही है, मेरी खुशकिस्मती है। और शुक्रिया उस रॉक का भी जिसने मुझे आज मौका दिया आपसे बात करने का। मैं बहुत ज्यादा इस टाइम अपने आप में बहुत ज्यादा खुशी महसूस कर रही हूँ क्योंकि इस प्रोग्राम में मैं सालों से ट्राई कर रही हूँ।
0: जी
1: मैं श्रीनगर कश्मीर से बोल रही हूँ, मेरा नाम है खालिदा। तो आज बहुत सालों से ट्राई कर रही थी इस प्रोग्राम में, तो शुक्रिया रॉक का भी।
0: तो खालिदा जी, आपका ये पहली बार कॉल लगा है आज?
1: जी, पहली बार इस प्रोग्राम में कॉल लगा है।
0: और कश्मीर जहाँ से आपने कॉल किया है, ये वो शहर है जिसे जन्नत भी कहते हैं।
1: हाँ, जन्नत भी कहते हैं और जन्नत है भी, क्योंकि जो भी कश्मीर आता है, चाहे वो किसी भी कंट्री से हो, किसी भी स्टेट से हो, इंडिया
0: जी
1: के किसी भी कोने से हो, तो जब भी कश्मीर को ही पहुंचता है, यहाँ से जाने का फिर दिल और मन भी नहीं करता है।
0: और ये वो जगह है जहाँ हर समय पर्यटक आते जाते रहते हैं, तो बहुत चहल पहल रहती है यहाँ पर।
1: हाँ, बहुत ज्यादा चहल पहल रहती है। और साथ साथ अगर सखी सहेली का संग हो और विविध भारती का संग हो तो
0: जी
1: फिर तो क्या ही बात है।
0: क्या बात है खालिदा जी, हमें भी ऐसे श्रोताओं का साथ बहुत अच्छा लगता है जो बड़ी शिद्दत से सभी प्रोग्रामों को सुनते भी हैं और उन्हें पसंद भी करते हैं। तो आप बताइए, आपकी पसंद के कौन कौन से कार्यक्रम हैं?
1: जी, विविध भारती पे जो आता है, आपकी फरमाइश आता है, या जयमाला आता है,
0: जी
1: सितारा आता है, या सुबह फोन इन प्रोग्राम कुछ भी आए ना इसमें, तो हम
0: जी
1: सब सुनते हैं। और जो भी ईमेल जैसे कभी कभी इसके प्रोग्राम आता है तो वो भी सब सुनते हैं। जयमाला सुनती हूँ, रोज में सुनती हूँ। और जो सखी सहेली है भी, इसका भी इंतजार करती हूँ। और पिटारा में जो आपकी फरमाइश आता है वो भी सुनती हूँ।
0: अच्छा, ये तो हुई रेडियो सुनने की बात है। रेडियो सुनने के अलावा आप क्या करती हैं, आपके शौक क्या है?
1: जी, मैं टेलरिंग के साथ करती हूँ और यहाँ पे कश्मीर में ज्यादा कढ़ाई होती है, जो पश्मीने के शाल होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है, तो यहाँ पे वही ज्यादा काम होता है।
0: और वो कढ़ाइयाँ बड़ी खूबसूरत होती हैं, और उसके चाहे शॉल हो, चाहे हम सलवार सूट पहने, दुपट्टे पहने, सभी चीजें बहुत नायाब लगती हैं। तो वो कढ़ाई का काम करती हैं आप?
1: बहुत, हाँ, कढ़ाई भी करती हूँ और टेलरिंग के साथ भी थोड़ा सा करती हूँ, लेकिन

0: ज्यादातर यहाँ पे कढ़ाई भी होती है, तो यहाँ की जो लड़कियां है अगर पढ़े भी लेकिन कढ़ाई साथ साथ उनका शौक भी होता है और कमाई के लिए वो भी जरूरी है।
1: जी बिल्कुल, और इसीलिए इस काम की मांग बहुत ज्यादा है, क्योंकि पर्यटक जब आते हैं तो कश्मीरी कढ़ाई के कपड़े खरीदना पसंद करते हैं, तो इसीलिए बाजारों में भी उसकी मांग बहुत ज्यादा रहती है। आपकी बातें भी उतनी ही खूबसूरत हैं। और बताइए कि आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
0: हमें सुना है मेरी जंग से, इस मूवी का वो सॉन्ग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है।
1: तो बहुत खूबसूरत गीत आपने पसंद किया है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली,
0: अपना नाम बताइए। कौन सी सहेली हमसे बात कर रही हैं?
1: अभिलाषा यादव है मेरा नाम।
0: अभिलाषा जी, कहाँ से कॉल किया है आपने?
1: मैं जयपुर से बात कर रही हूँ आपसे। तो
0: अपने शहर के बारे में और अपने बारे में कुछ बताइए कि आप क्या करती हैं।
1: मेरा शहर पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, जयपुर राजस्थान से
0: जी
1: है। मैं एज ए नर्सिंग ऑफिसर काम करती हूँ मेडिकल डिपार्टमेंट में।
0: नर्सिंग ऑफिसर आप हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट से जुड़ी हैं, तो
1: जी,
0: किस तरह का काम रहता है? अपने काम के बारे में बताइए हमें।
1: ऑल
0: तो
1: टाइम हमें 24 आवर्स की सर्विसेज होती हैं कि जब भी कभी कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें जाना भी पड़ता है। पर अभी मैं 24x7 में केवल एक टाइम की ही ड्यूटी करती हूँ क्योंकि मेरी डिस्पेंसरी ड्यूटीज हैं अभी फिलहाल।
0: तो इसमें आपकी शिफ्ट ड्यूटीज होती हैं, लेकिन अभी फिलहाल एक ही समय आपका नियत समय है, उसमें ही आप
1: हाँ जी,
0: काम कर रही
1: बिल्कुल
0: हैं। फिर आप रेडियो सुनने के लिए भी समय निकाल पाती हैं।
1: बिल्कुल। मैं दोपहर में शाम को मेरा मन होता है उस अकॉर्डिंग मैं अपना शेड्यूल चेक कर लेती हूँ कि भाई कब मुझे क्या सुनना है, तो मैं सेट कर लेती हूँ उस अकॉर्डिंग अपना टाइम।
0: और नर्सिंग फील्ड से आप कब से जुड़ी हैं?
1: करीब 2007 से। हाँ
0: यानी कि करीब करीब 20 साल होने आए हैं आपको इस काम में,
1: जी, हाँ
0: तो अच्छा खासा अनुभव है आपका, और जॉब ने आपको बहुत कुछ सीख भी दी होगी।
1: बिल्कुल। हमारा वर्क ही ऐसा है कि हमें रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। हर बार अलग तरीके का पेशेंट होता है, हर बार अलग तरह से केयर करनी होती है, तो
0: जी
1: बहुत सी चीजें, नई चीजें भी सिखा के जाती है हमें। और हमारा जो प्रोफेशन है वो लर्निंग प्रोफेशन ही है।
0: जी ये सेवा भाव का काम है, और अगर आप सेवा भाव से करते हैं, सच्चाई और ईमानदारी से करते हैं, तो जिन परिवारों के मरीजों की आप देखभाल करते हैं, वहां से आपको दुआएं भी बहुत
1: वो
0: मिलती
1: हमें बहुत,
0: होंगे।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो हमें बहुत दुआएं देके जाते हैं जब वो बिल्कुल ठीक होके जाते हैं, क्योंकि वो हमें ऐसे समझते हैं जैसे डॉक्टर उनके लिए भगवान है। उसकी तरह से हम जब उन्हें अपनी सर्विसेज देते हैं तो उनको यही फीलिंग आती है, वो खूब हमें ब्लेसिंग्स देके जाते
0: तो
1: हैं।
0: बड़ा अच्छा काम है आपका। और बताइए अभिलाषा जी, आज कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
1: आप हमें ताल मूवी से गाना है, इश्क बिना क्या जीना है, और ये सुनवाएं प्लीज।
0: तो ताल फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं, आपकी पसंद का। आपने हमें कॉल किया, बहुत बहुत शुक्रिया।

0: हेलो सहेली।
1: जी नमस्कार मैम।
0: नमस्ते, बताइए हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर कौन सी सखी जुड़ी है?
1: जी मैम, रिंकू देवी बात कर रही हूँ। मैं जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट डोडा तहसील ठाठी गांव कंठी से।
0: तो आपके बहुत खूबसूरत शहर से आपने फोन किया है। अपने शहर के बारे में बताइए और अपने बारे में भी कुछ बताइए।
1: पहाड़ी एरिया है यहाँ पर, तो मतलब गर्मियों में भी बड़ा अच्छा मौसम रहता है और यहाँ पर लोग आते हैं मतलब घूमने के लिए, क्योंकि अच्छा इलाका है यहाँ का और यहाँ पर मतलब की गर्मी कम लगती है।
0: गर्मी का तो एहसास होता ही नहीं है पहाड़ी क्षेत्रों में। और
1: जी
0: अब
1: बिल्कुल
0: जो
1: मैम,
0: मौसम आने वाला है वो तो बर्फबारी का और बहुत कड़ाके की ठंड का मौसम आने वाला है।
1: जी बिल्कुल मैम, अब तो थोड़ी थोड़ी सर्दी आने लगी है, सुबह शाम थोड़ी सर्दी लगती है इधर।
0: तो रिंकू जी आप क्या करती हैं?
1: जी मैम, मैं घर का ही काम करती हूँ।
0: घर के कामों में भी आपकी पसंद का काम कौन सा होता है?
1: जी मैम, मुझे तो सबसे ज्यादा मतलब कैसे घर में मैं किचन में काम करना मुझे अच्छा लगता है।
0: तो
1: जी
0: बताइए आप आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैम, गाना मैंने दोस्ती फिल्म का सुनना है, राई मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। और ये सभी को ये गाना मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ, मतलब सभी अपनी सहेलियों को बहुत शुभकामना, और आपको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना, आप बड़ा अच्छा प्रोग्राम प्रस्तुत करते हैं।
0: तो आपकी जो सभी सहेलियां हैं उनको भी हम ये गाना सुनवाते हैं और हमारे सभी सुनने वाले इस गीत को पसंद करेंगे। सुनिए अपनी पसंद का गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: नमस्ते सखी, कौन बात कर रही हैं?
1: मैं आशा चौहान बोल रही हूँ गुजरात राजकोट से।
0: गुजरात राजकोट से। तो आस्था जी, अब जो मौसम आने वाला है वो गरबे का मौसम है। आज से बस 9-10 दिन बाद गरबा शुरू हो जाएगा और गुजरात में तो बहुत धूम रहती है, तो
1: बिल्कुल
0: आपको गरबा करना अच्छा लगता है?
1: नहीं, मुझे देखना अच्छा लगता है। मैं हमेशा से डांस पर्सन नहीं रही हूँ, मैं स्पोर्ट्स पर्सन रही हूँ।
0: जी
1: मैं साहित्य पसंद किया है मैंने हमेशा, और मैंने कविताएं भी लिखती हूँ, और मुझे डांस देखना अच्छा लगता है, कल्चरल प्रोग्राम। और मैं भारत के हर कल्चर को बहुत पसंद करती हूँ, और मुझे भारत के अंदर ही घूमना पसंद है। सारे स्टेट्स के कल्चरल एक्टिविटीज देखना, वहाँ का खाना खाना, वहाँ के नज़ारे देखना, और बस साहित्य से जुड़ी हूँ इसलिए कुदरत को देखना अच्छा लगता है ज्यादा।
0: और ये जो देश प्रेम का भाव है आपके अंदर, ये बहुत सुंदर है। तो आपने बताया कि आप साहित्य से जुड़ी हैं, आप लिखती भी हैं। अपनी लिखी कोई कुछ पंक्तियां आपको अगर याद हैं, कोई कविता याद है तो हमारे साथ साझा करना चाहेंगी?
1: हाँ जरूर, मैंने दो कविताएं चुनकर रखी है। जब मैंने सोचा फोन लग जाएगा तो मैं आपको सुनाऊंगी। एक कविता है हम हिंदुस्तानी, उसका नाम रखा है मैंने,
0: जी
1: और वो कविता इस तरह से है, शहर को गांव बना दो। क्योंकि आजकल शहर बढ़ते जा रहे हैं और बहुत सारी ड्रॉबैक्स भी कुदरत को लेकर आ रहे हैं,
0: जी
1: ग्लोबल वार्मिंग और सब, तो उसके ऊपर कविता लिखिए। शहर को गांव बना दो, पेड़ों की बौछार लगा दो, पानी की फुहार बहा दो, शहर को गांव बना दो, खेती की हरियाली बिछा दो, चिड़िया का अंबार लगा दो, मौसम का हाल बता दो, बाइक नहीं साइकिल चला दो, शहर को गांव बना दो। मैं इसके बाद ये बोलना चाहती हूँ कि मैं खुद साइकिल चलाती हूँ, 55 इयर्स की उम्र है मेरी।
0: और साइकिल
1: और मैं
0: चलाने
1: दूसरी
0: से
1: कविता,
0: एक फायदा तो ये है कि प्रदूषण जो है वो कम हो जाता है और
1: हाँ
0: आपकी
1: बिल्कुल,
0: सेहत है वो भी बरकरार
1: हाँ
0: रहती है। और जैसा अभी आपने कविता सुनाई कि शहरों को गांव बना दो, तो वाकई अगर ऐसा हो सके तो जो खुशहाली है वो फिर से लौट आएगी और जो प्रदूषण है वो बहुत हद तक कम हो सकेगा।
1: बिल्कुल। लेकिन 80% लोग जो नहीं सोच पाते या सोचते नहीं है, क्योंकि ज्ञान की कमी है और शिक्षा की कमी है थोड़ी सी, उनको भी सोचने की जरूरत है। तो इस दुनिया में कुछ भी खराब नहीं होगा हम अगर
0: बिल्कुल।
1: सब समझ जाएंगे।
0: और आप जैसे जागरूक लोग जब तक हैं तो एक ही इंसान आगे और 4 लोगों को जागरूक कर सकता है। और आपने हमें कॉल किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आस्था जी। हम चाहेंगे कि आपको आपकी पसंद का गीत सुनवाएं, तो बताइए आपकी
1: जरूर,
0: पसंद क्या है?
1: मेरी पसंद का जीवन मृत्यु पिक्चर का कोई भी गाना आप सुना दीजिएगा, झिलमिल सितारों वाला सुना दीजिएगा। मेरी दूसरी कविता जो मैंने निकाल रखी थी उसकी भी 4 पंक्तियां सुना देना चाहती हूँ आपको।
0: जरूर सुनाइए।
1: जरा के हम सफर, उस कविता का नाम है, रखा है मैंने, समंदर को के मोती चुरा कर सीप बना दो। इंसान कुछ भी कर सकता है, सीप में से मोती निकलती है,
0: जी
1: लेकिन मोती में से भी सीप बना सकते हैं इंसान, ज्वेलर है वो बना सकते हैं। इंसान कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो पॉजिटिव करे कुदरत के लिए और इंसानियत के लिए और पशु पक्षियों के लिए भी,
0: जी
1: नेगेटिव ना करे। समंदर के मोती चुरा कर सीप बना दूं, कर्म क्षेत्र की राही हूँ मैं दीप बना दूं, उद्वेग मन के मीत बना दूं, हार नहीं जीत बना दूं।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर आपने अपनी कविताएं सुनाई हैं। आपकी पंक्तियां, आपकी लेखनी बहुत खूबसूरत है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हम देते हैं। तो बस अच्छी अच्छी कविताएं लिखती रहिए और इसी तरह से रेडियो के माध्यम से इन्हें

आज कॉल करने वाली सभी सखियों को धन्यवाद। और हर बार जब ये कार्यक्रम होता है तो कुछ नई सखियां हमारे साथ जुड़ती हैं और कुछ ऐसी सखियां जो हर थोड़े अंतराल पर हमें कॉल करती रहती हैं। तो जिन सखियों का कॉल आज भी नहीं लगा वे निराश ना हो, हो सकता है अगली बार आपका कॉल लग जाए, इसलिए कोशिश जरूर कीजिएगा। जिन सखियों ने हमसे बात की हम उनसे अनुरोध करते हैं कि अगले 2 महीने तक वो कॉल ना करें ताकि नई सखियों को भी कॉल करने का मौका मिल सके। और हमारे पुरुष श्रोता, उनसे हम अनुरोध करते हैं कि मंगलवार के दिन जब हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग होती है उस समय वे कॉल ना करें, क्योंकि इससे लाइनें व्यस्त हो जाती हैं और हमारी सखियों को कॉल कनेक्ट करने में परेशानी हो सकती है। सखियों, अब आपसे मुलाकात होगी हेलो सहेली के अगले अंक में। सभी सुनने वालों को हम बता दें कि हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार के दिन सुबह 11 बजे से। हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं 400-24662, एक अन्य नंबर है 28670288, मुंबई का SED कोड है 022। टेलीफोन नंबर एक बार

0: से बता देते हैं, 4002466 2। दूसरा नंबर नोट कर लीजिए, 2867 0 2 8 8। मुंबई का एसटीडी कोड है 02 2। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर है अनुश्री गुप्ता। संपादन सहयोग मिला नम्रता टिकोले से। विविध भारती की ओर से हेलो सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। दीजिए अपनी सखी चंचल वर्मा को इजाजत। नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी आज हम आपको सुनवा रहे हैं ममता सिंह की लिखी कहानी यादों की तपिश का पहला भाग। स्वर है ममता सिंह का।
2: आज अचानक ठंड बढ़ गई है। गुनगुनी नरम धूप बदन को सहला रही है। दिव्या अपनी नोटबुक और किताब लेकर हॉस्टल का बरामदा पार करते हुए लॉन में आ गई है। लॉन के किनारे किनारे की घास अभी भी गीली है। क्यारियों में लगे फूलों और पौधों की पत्तियों पर ठहरी ओस की बूंदों पर पड़ती सूरज की किरणें मोती सी चमक रही हैं। धुएं जैसे उड़ते हुए बादल सूरज को ढक लेते हैं। छिपा छिपी खेलती बदली और धूप उसे गुदगुदा रही है। मन भी धूप छाही हो रहा है। घास पर जैसे मोर पंख बिछ गए हों और उसकी आंखें जगर-मगर कर रही हों। उसे यकीन नहीं हो रहा है कि उसकी बनाई डॉक्यूमेंट्री एंटरटेनमेंट चैनल पर अप्रूव हो गई है। चुनौतियां बढ़ गई हैं। कल जब मंच पर प्रणव सर ने सबके सामने हाथ मिलाकर उसे कॉन्ग्रेट्स किया तो कितना रोमांच हुआ था। मारे खुशी के जैसे पंख लगाकर वो उड़ चली हो आकाश में।

शूटिंग में उसे बहुत सारी समस्याएं हुईं। सब्जेक्ट खौफनाक था, चुनौती बड़ी थी। शूटिंग के लिए पुलिस डिपार्टमेंट के सुपरिंटेंडेंट जब आते तो वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती कि कुछ ऐसा हो कि शूटिंग कैंसिल हो जाए, जबकि इस मुश्किल डॉक्यूमेंट्री को पूरा करने का उसने प्रण खुद ही किया था। सचमुच उसकी प्रार्थना सुन ली जाती, शूटिंग कैंसिल भी हो जाती। एसपी की शूटिंग के दौरान कुछ अलग तरह की समस्याएं होती, जैसे कि सवालों का चुनाव भी वो स्वयं ही करते थे। शुरुआती दिनों में तो मारे घबराहट और डर के रातों को नींद नहीं आती थी। मदद के लिए 5 टीचर्स का पैनल बना था, उसमें आपस में ही पॉलिटिक्स होती थी। हर टीचर खुद क्रेडिट लेना चाहता था। सही मायनों में तो प्रणव सर, जो उसके मेन गाइड हैं, उन्होंने ही काफी सहायता की। रात रात भर जाग जाकर इस डॉक्यूमेंट्री की एडिटिंग मिक्सिंग की। टीचर्स का ये पैनल और अच्छे दोस्तों का सहयोग और साथ न मिलता तो दिव्या डॉक्यूमेंट्री तो क्या छोटा मोटा प्रोजेक्ट भी नहीं बना पाती।

बचपन से लेकर अब तक के उसके जीवन की ये पहली घटना है जिस पर उसे अपने आप पर गर्व हो रहा है। उसे याद आ गए वो दिन जब क्लास में हर कंपटीशन उसके लिए सजा थी। वो परफॉर्म ही नहीं कर पाती थी, नजरें नीचे झुकी हुई होती और मम्मी का चेहरा आंखों के सामने होता था। चाचा की बंदिशें आवाज को जब्त कर लेती थीं। काश आज वो अपने घर में होती तो कितना अच्छा होता। घर वालों की याद आते ही दिव्या मायूस हो गई। एक ऐसी तलहटी में पहुंच गई जहां जाने का रास्ता तो है लेकिन वहां से लौटना नामुमकिन।

वो दिन जहन में ताजा हो गया। सूर्यास्त हो रहा था। दिव्या उदास होकर रूठकर कमरे में बंद हो गई थी। वॉल साइज विंडो पर लगे पर्दे झटके से खींचकर कमरे में अंधेरा कर एसी चलाकर चादर तान कर लेट गई थी। 7 बजे यहाँ सूर्यास्त होता है, 8 बजे लोग दफ्तर से घर लौटकर शाम की चाय पीते हैं। ये कोई सोने का वक्त है। उठो दिव्या, दिव्या उठो, कहते हुए पारो ने चादर खींचकर परे सरका दिया। वो सिराने बैठकर दिव्या को दुलराती हुई बोली, भूख हड़ताल से तुम अपने मन की करवा लोगी। दिव्या तमक कर

उठ बैठी। तो फिर तो क्या करूं मम्मी, क्या करूं कि मेरी डिमांड पूरी होगी? आखिर इस घर में जरा भी अपनी मर्जी के करने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। कॉलेज की 10 लड़कियां हिस्सा ले रही हैं उस कैटवॉक शो में। मम्मा मैं अकेली नहीं हूं, उस शो में सिर्फ 1000 रुपए ही तो फीस है, आखिर क्यों नहीं जाने दे रहे हैं आप लोग? सवाल रुपए का नहीं है, ड्रेस का है, ड्रेस का। फैशन टीवी की नेकेड लड़कियों की तरह तुम भी पूरा बदन हिलाकर बिल्ली चाल चलोगी हैं? मम्मी बिल्ली चाल नहीं, कैटवॉक। अरे तो कैटवॉक कर कर मिस वर्ल्ड मिस इंडिया बन जाओगी। क्या कहेंगे हम लोग अपनी सोसाइटी वालों से? सोसाइटी वाले अब दूर हो गए हैं ना, अब तो चौल की दुनिया से हम टावर में रहने आ गए हैं। अब भी सोसाइटी वालों का आखिर कैसा डर, कैसा खौफ? मम्मी ये सिर्फ फैशन शो है, स्टेज पर कैटवॉक करना है। अरे इस पर हमें प्राइज मिलेगा, आजकल स्कूल कॉलेज में इस तरह के कॉम्पिटिशन होते रहते हैं। पता है लास्ट ईयर रीना ने जीता था ये अवार्ड, उसे तो आप जानती है ना, कितनी अच्छी है रीना। अरे बिटिया हमने हामी भर दी तो तेरे पापा नहीं मानेंगे, जैसे तैसे तेरे पापा को भी मना लिया ना तो तेरे चाचा को खबर लग गई ना तो वो पढ़ाई छुड़वा कर तेरी शादी करवा कर ही दम लेंगे। हाँ अपने पापा को तो तू अच्छी तरह से जानती है ना, चाचा के खिलाफ एक को लफ्ज नहीं सुनते वो। दिव्या के लिए इस तरह का संघर्ष रोजमर्रा में शुमार हो गया था। अपनी एक भी बात मनमाने के लिए उसे ऐसे ही रोजाना जूझना पड़ता था। ये ड्रेस मत पहनो, स्लीवलेस नहीं चलेगा, शॉर्ट्स मिनी स्कर्ट पहनना तो अलाउड ही नहीं था, सिर्फ कॉलेज जाते वक्त जीन्स और टॉप पहनने की बड़ी मुश्किल से इजाजत मिल सकी थी, लेकिन साथ में स्टॉल या दुपट्टा डालना जरूरी था। कॉलेज के शुरुआती दिनों में दिव्या घर से सलवार सूट पहनकर निकलती और रायमा के घर चेंज कर जीन्स टॉप पहनती और उसके बाद कॉलेज जाती। एक दिन चाची ने देख लिया तो खूब हंगामा हुआ। पापा की हर बात मानने वाली मम्मी ने इस बार मर्म को समझा और उन्होंने वेस्टर्न पोशाक पर मुहर लगा दी थी, पर शर्त ये कि गला डीप नहीं होना चाहिए। कॉलेज जाते वक्त किसी लड़के से मेल जोल नहीं करना, हाथ नहीं मिलाना, किसी की बाइक पर लिफ्ट नहीं लेना जैसी नसीहतों की घुट्टी मम्मी रोज पिलाती थी। कॉलेज के फंक्शन में डांस और गाने में पार्टिसिपेट करने का सोचना भी पाप था। दिव्या के घर में कॉलेज का मतलब सिर्फ पढ़ाई, किताबें, इम्तिहान पास करना, एक्स्ट्रा करिकुलर की कोई जगह नहीं थी इस घर में। गुड गर्ल बनकर सिर झुकाकर कॉलेज जाना और घर लौटकर रोजाना आने वाले मेहमानों का स्वागत करना और बड़ी निपुणता से घर के कामकाज करना, यही उसकी बेहतरीन जिंदगी थी। अपनी राय दी नहीं कि 10 मिनट का भाषण सुनने को मिल जाता था। कभी कभी रायमा की बिंदास बातें उसे सही लगती थीं। सब कुछ अपनी मर्जी से करो, घर वाले कन्विंस ना हो तो उनसे बहाने बनाओ। वो तो अक्सर लड़के लड़कियों के ग्रुप के साथ ट्रैकिंग पर चली जाती थी, उसके घर वाले राजी भी हो जाते थे। दिव्या के घर वाले इतने पारंपरिक और रूढ़िवादी हैं कि अभी भी गांव वाली मानसिकता उनके भीतर गहरी जड़ें जमाए हुए हैं। अरे समय के साथ विचारों की रिसाइकलिंग करना बहुत जरूरी है, विचार उसूल ये सब दिव्या के घर वालों के लिए महज किताबी अल्फाज हैं। वक्त पर खाना खाना, पैसे कमाना, साल में एकाध बार कहीं परिवार के साथ घूमने जाना, यही शानो शौकत की जिंदगी है इनके लिए। उनके मुताबिक दिव्या को ये सब तो मिल रहा है। पारो दिव्या को समझाकर परेशान हो गई, दुखी होकर वो कमरे से चली गई। उनके जाते ही दिव्या उठी, अपने कटे बालों में बैकपिन लगाते हुए आईने के सामने खड़ी हो गई, आगे पीछे मुड़कर गर्दन टेढ़ी करके हर तरफ से अपने को निहारती हुई अपने ही रूप पर मुग्ध होती रही। रंग सांवला है तो क्या हुआ, रूप और फिगर तो है ना खूबसूरत और चार्मिंग। दिव्या ने वार्डरोब से अपनी टाइट फिट साइड कट मैक्सी निकालकर पहनी, हल्का मेकअप किया और इस तरह मटक कर हाथ हिलाकर बोलती रही जैसे टीवी की कोई वीजे हो।
अगर मम्मी पापा राजी हो गए तो पक्का कॉलेज क्वीन का खिताब उसे ही मिलेगा। सोचते हुए आंखें मूंद कर थोड़ी देर के लिए दिव्या अपनी बिल्डिंग की 12वीं मंजिल की कायद से बाहर निकलकर फैशन शो के भव्य स्टेज पर पहुंच गई थी, जहां सामने बड़े बड़े फिल्म स्टार्स बैठे थे। दर्शकों का हुजूम था, तालियों की गड़गड़ाहट थी। अक्सर ही दिव्या सपनों की एक चमकीली दुनिया में खो जाती थी, जहां युवा मन के रोशन चिराग होते हैं और हर ख्वाब मुकम्मल होता है। हर रास्ते की तयशुदा मंजिल होती है। रास्ते में आई हर अड़चन और रुकावट को युवा मन चुटकियों में दूर भगाना चाहता है। भीड़ के महासागर में मन माफिक मंजिल तक पहुंचने के लिए रुकावटों के पत्थर को दूर भी भगाना पड़ता है। सपने पूरे करने के पीछे के संघर्ष को युवा मन उस वक्त कहां समझ पाता है। उमंग और उत्साह में डूबी दिव्या ने भी संजोया मखमली ख्वाब। ख्वाब की मास कम्युनिकेशन में 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स करेगी। इसके लिए उसे चाहे जो करना पड़े, घर वालों का विरोध भी वो अफोर्ड कर लेगी।

कंग्रेचुलेशंस। अरे किन ख्यालों में खोई हो बार्बी डॉल। इरफान दिव्या से हाई फाई करते हुए बोला। दिव्या अपने कॉलेज के दिनों से छम से कूदकर वापस आ गई हॉस्टल के लॉन में, जहां सर्दी की नरम धूप का एक टुकड़ा दिव्या

के नीले स्वेटर पर अटक गया था। क्यारियों में दुपहरिया खिलकर मुस्कुरा रही थी। हॉस्टल की दीवारों पर लटके बोगनविलिया रानी गुलाबी रंग से नहाकर और ताजा हो गए। दिव्या, यू आर वेरी लकी, तुम्हारा प्रोजेक्ट खूब खूब लाइक किया गया है। और पता है, रावत सर लास्ट मीटिंग में तुम्हारी और तुम्हारी बनाई डॉक्यूमेंट्री की चर्चा कर रहे थे और तारीफ भी कर रहे थे। दिव्या बुत बनी बैठी रही, कोई जवाब नहीं दिया उसने। दिव्या के मन में इस समय यादों का भूचाल सा आया हुआ है। हॉस्टल में आए 3 साल हो गए हैं, घर वालों को लेकर वो कभी भी इतनी व्यग्र नहीं हुई, पर आज मम्मी जैसे सामने हैं। सौम्या दी के नसीहतें सामने हैं। दिव्या स्मृतियों की रेतीली आंधी और तपिश से झुलस गई है। उड़ती हुई रेत से दिव्या अपना चेहरा बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन रेत की किरकिरी मुंह में भी भरी जा रही है और जैसे उसका पूरा बदन और मन रूखा हुआ जा रहा है। तपिश और दंश को छोड़ आई है घर पर वो, लेकिन हॉस्टल की जद्दोजहद भी कहाँ कम है। आर्थिक तंगी, पढ़ाई का प्रेशर, प्रोजेक्ट पूरा करने का तनाव और दबाव, रिश्तों के समीकरण, इस सब में निपट अकेले तालमेल बिठाना कितना कठिन हो गया है। एक समय था जब अपनी सारी जिम्मेदारी घर वालों पर थी, सारा दोष घर वालों पर मड़क देती थी, पर अब अपनी गलतियों की सजा खुद को ही देनी है, खुद को अपनी पीड़ा से भी निकालना है।

0: दिव्या खुद को तपते रेगिस्तान में पाती है, जहां दूर तक वीराना है। मालूम है नियत दूरी तय करने पर उसे लोग मिलेंगे, शहर मिलेगा, पर उस दूरी तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत और बहुत लंबा संघर्ष है। हॉस्टल के कलीग्स, दोस्तों और टीचर्स के साथ के बावजूद वो खुद को मरुस्थल में जैसे अकेला पाती है। कामयाबी मिल जाना भी कई बार बेहद एकाकी बना देता है। कामयाबी कई बार अपनों से भी दूर कर देती है।
1: व्हाट हैपेंड दिव्या,
0: क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? अरे अब तो डॉक्यूमेंट्री से भी पैसे आ जाएंगे ना, तुम्हारी कड़की के दिन भी अब खत्म होने वाले हैं। रिलैक्स्ड, अब सिर्फ स्कॉलरशिप के भरोसे नहीं जीना होगा तुम्हें।
1: नहीं यार, खुश हूं, खुश हूं, बहुत खुश हूं मैं। आज पता है, आज मुझे घर वालों की बहुत तलब लगी है, मम्मी की बहुत याद आ रही है।
0: खैर छोड़ो। अरे तो तू उन्हें फोन करके बता दे कि तू बहुत खुश है, तुझे कितनी बड़ी कामयाबी मिली है, वो लोग भी खुश होंगे ना।
1: नहीं नहीं इरफान, उनकी नाराजगी और बढ़ जाएगी। उन्हें पता नहीं है कि हम यहाँ रात रात भर बॉयज और गर्ल्स साथ साथ काम करते हैं, एक दूसरे को हग करते हैं, एक दूसरे से हाई फाई करते हैं, लेकिन हम सब सिर्फ एक दोस्त हैं, रियल फ्रेंड्स। वे कभी नहीं समझेंगे, मेरी प्रॉब्लम कभी नहीं समझेंगे। पता है फाइनल एडिटिंग वाले दिन मैं, रायमा और प्रणव सर ने एक ही रूम शेयर किया था, बस थोड़ी देर के लिए झपकी ली थी बारी बारी से। उन्हें इन सब की भनक भी लग जाए ना तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वैसे भी मैं कौन सा उनके लिए जिंदा हूं, कहां जिंदा हूं मैं उनके लिए। उस दिन मम्मी ने मुझे कह दिया था, तू हम सबके लिए मर चुकी है, मर चुकी है तू हम सबके लिए।
0: छोड़ ना यार, अब आगे की सोच। 2 महीने बाद फंक्शन है, ड्रामा का थीम तैयार हो गया है। इस बार एक ड्रामा और साथ में एक कोरस सॉन्ग भी तैयार कर लेते हैं, ठीक है? हाँ यार, इट्स गुड आइडिया। पिछले साल का फंक्शन अप टू द मार्क नहीं था, इस बार हम लोग कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं तो बस 2 साल और बिताकर यहां से सीधा मुंबई वापस लौटूंगी। मम्मी पापा से दूर आई हूं उन्हें नाराज करके, तो कुछ बनकर ही उनके पास जाऊंगी। मुझे तो टेलीविजन चैनल में काम करना है, बस इतना सा ख्वाब है। हाँ पर तुझे प्रॉब्लम क्या है? मैंने तो सुना है तेरी बनाई वो साइबर क्राइम वाली डॉक्यूमेंट्री चैनल के लिए अप्रूव हो गई है, वो भी एंटरटेनमेंट चैनल के लिए।
1: हाँ यार, अभी तो सिर्फ अप्रूव हुई है ना, टेलीकास्ट नहीं हुई है। मेरे सीरियल्स जब कई चैनल पर टेलीकास्ट होंगे तब वो मेरी कामयाबी की पहली सीढ़ी होगी। वैसे एक चैनल ने हम सब की डॉक्यूमेंट्री का एक मोंटाज दिखाया था।

के जाते ही दिव्या फिर स्मृतियों की कटीली सघन झाड़ियों में उलझ गई। गोया कोई ऐसी मखमली याद नहीं है जिसके दामन में वो सिर रखकर सुकून पाए, वो नरम स्पर्श से सहलाए। उसकी हर याद कसैली है। 12वीं की पढ़ाई के दौरान दिव्या ने कभी इंडिपेंडेंट होकर कुछ नहीं किया। बड़ा मन होता था डांस में नाटक में हिस्सा लेने का, पर सब कुछ प्रतिबंधित था। 3 भाई बहनों में सौम्या दी सबसे बड़ी, उसके बाद दिव्या और सोनू छोटा। दिव्या के सामने सौम्या दी एक प्रतिमान की तरह थी। हर बात में सौम्या दी का उदाहरण दिया जाता था। सौम्या की तरह बनो, उसे देखो, उसने भी तो पढ़ाई की है, वगैरह वगैरह। दिव्या के घर वालों के मुताबिक सौम्या की अच्छाई के कुछ पैमाने निर्धारित थे, जो दिव्या को कतई गवारा नहीं थे। दिव्या ने जब भी पढ़ाई के अलावा अपने देखे सपनों का जिक्र किया तो सौम्या का उदाहरण सामने पेश कर दिया जाता था। एक बार जब दिव्या ने ऊंची आवाज में कह दिया, सौम्या दी को आखिर क्या मिला? हाँ, आधी अधूरी पढ़ाई कर ली, क्या मिला? अब वो अपने घर में ही नौकर से भी बदतर हालत में जी रही हैं। क्या फायदा हुआ इस जिंदगी का? मुझे नहीं बनना है सौम्या, सौम्या, सौम्या, सौम्या। मुझे टीवी चैनल और फिल्म में काम करना है, मुझे सौम्या दी नहीं बनना है। वाक्य पूरा होता इससे पहले ही मम्मी का जोरदार चांटा गाल पर लगा था। उस दिन दिव्या कमरा बंद करके खूब रोई थी। सौम्या दी को फोन लगाकर बोला था, दी ये क्या किया तूने? तूने कभी घर में किसी बात का विरोध ही नहीं किया, गऊ की तरह तू सहती रही, अभी भी सह रही है। सब चाहते हैं मैं भी सौम्या बनूं, पर मैं नहीं बन सकती दी। तू अपनी जिंदगी से खुश नहीं है, फिर भी दिखाती है कि सब कुछ ठीक है, तू बहुत खुश है। तुझे क्या मिलता है सौम्या दी ये नाटक करने में? दी, सब ठीक और अच्छे जीवन में फर्क है। जो दीवार तू नहीं तोड़ सकी ना, मैं उसे तोड़कर बाहर निकलकर दिखाऊंगी। मैं उस दीवार से बाहर जाना चाहती हूं।

बारिश का मौसम था। वनडे पिकनिक पर कॉलेज की टीम माल्शेज घाट जा रही थी। कई दिनों की सिफारिश के बाद दिव्या को परमिशन तो मिल गई, पर उससे पहले उसे घर की अदालत के मुकदमे में तमाम जिरह पर खरा उतरना पड़ा था। कितने लोग, कौन कौन जा रहे हैं मां? वो लड़के संस्कारी और कुलीन तो है ना? लड़कों से जरा डिस्टेंस मेंटेन रखना। हां, वे हाथ मिलाने के बहाने लड़कियों के करीब आते हैं और फिर दोस्ती की कड़ी जोड़ लेते हैं। समझ में आ रही बात ना? पर हमारे यहां लड़कों से लड़कियों की दोस्ती नहीं चलती। हम खानदानी लोग हैं। वैसे भी तुम्हें मजबूरी में को एजुकेशन में पढ़ाया जा रहा है, इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना। समझाइश की ये पुड़िया चाचा ने थमाई थी। चाची ने कपड़ों पर सवाल उठाया था। झरने में भीग जाओगी, पारदर्शी कपड़ों पर लड़कों की नजर फिसलती है। मोटे कपड़े का कॉटन सूट पहनना। समझ गई बच्ची? बाइक पर तुम्हारे चाचा के साथ बैठकर हम भी इतना घूमे हैं, लेकिन मजाल क्या कि सिर का पल्लू कभी उतर गया हो। चाची ने ज्ञान की घुट्टी कुछ यूं पिलाई थी। दिव्या ये कहने से नहीं चूकी। चाची, जब विनोद भैया घर से इतनी दूर मनाली 4 दिन के ट्रिप पर गए थे तो ग्रुप में लड़कियां ज्यादा थीं, पता है आपको? लेकिन विनोद भैया से इतनी जिरह किसी ने नहीं की थी, क्योंकि वो इस घर के सुपुत्र हैं, है ना चाची? जिस घर में सवाल पूछने की मनाही हो, वहां इस जुर्रत की सजा के तौर पर दिव्या को सबके सामने थप्पड़ खाना पड़ा था। जन्म देने वाली मम्मी का तो सबसे बड़ा हक बनता था। वो हाथ पकड़कर बेडरूम में खींचती हुई ले गई थी, लेकिन अंदर जाकर उन्हें जाने क्या हुआ कि वो पुचकारने लगी। बेटी, कुदरत ने जो लड़की और लड़के में फासला बनाया है ना, उसे कोई नहीं पाट सकता है। हम संस्कारी लोग इतना आगे नहीं बढ़े हैं बेटा। हम कितनी भी सभ्यता सीख लें, हमारी सोच तुम्हारी पीढ़ी की तरह मॉडर्न और खुली नहीं हो सकती है ना। हमें पता है तू दोहरी जिंदगी जीती है, घर में अलग और कॉलेज में अलग। घर की दहलीज पार करते ही पूरी संस्कृति तेरी बदल जाती है। पर बेटी, हम क्या करें, हम तो मजबूर हैं ना। हम भी तो हिंदी में एमए किए हैं, फैशन डिजाइनिंग में डिप्लोमा भी किए थे, लेकिन क्या मिला? वही खाना बनाना खिलाना, घर वालों के काम करना। हम लड़कियों को अपनी राय या सिद्धांत बनाने की आजादी हमारे समाज ने अभी भी हमको नहीं दी है। तेरे पापा और तेरे चाचा की सोच हम नहीं बदल पाएंगे ना बेटी। बस मैं सोच बदलती रहूं, आप लोगों की दकियानूसी रास्तों पर चलती रहूं मम्मी, है ना? यही चाहती हैं आप? क्यों पढ़ाया मुझे इंटरनेशनल स्कूल में? सरकारी स्कूल में दाखिला करवा दिया होता तो बेहतर होता। दिव्या आंसू और गुस्से को जज्ब करते हुए बोली, आपको पता है मम्मी, पूरी क्लास में मेरा पहनावा, टिफिन, बोलचाल का तरीका सब कुछ एकदम अलग है, एकदम अलग। मेरे फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरी इंग्लिश स्पीकिंग की टांग खींचते हैं। वे कहते हैं मैं हिंदी में इंग्लिश बोलती हूं, पर अब नहीं। मुझे अपने दकियानूसी थोपे गए घिसे पिटे संस्कारों से बाहर आना होगा। आप लोगों की थोपी गई परंपराओं से मुझे अब चिढ़ होने लगी है, उबने लगी हूं मैं। एक तो इतने छोटे से घर में इतने सारे लोग भरे हैं, कोई प्राइवेसी नहीं है यहां। मैं सारे दोस्तों के घर जाती हूं, पर मैं अपने फ्रेंड्स को घर नहीं बुला सकती, क्योंकि उनमें लड़के भी हैं, है ना? इस घर में मेरे स्वस्थ और आधुनिक विचारों का आखिर गला क्यों घोटा जाता है? इसमें बुराई क्या है? लड़की लड़के सब बराबर हैं आजकल। ऐसा लगता है कि हम किसी गांव या टापू में रह रहे हैं। आखिर जब आप इतना आगे बढ़ गए हैं तो अपने विचारों में भी तब्दीलियां ले आइए ना। बहरहाल तमाम पूछताछ के बाद आखिर में दिव्या को माल्शेज घाट पर वनडे पिकनिक जाने की अनुमति मिल ही गई। कैसा सुखद था वो सफर। पहाड़ों से उतरती पगडंडी सरीखी पानी की दूधिया पतली धारा, कुदरत के तराशे पत्थरों को स्पर्श करती हुई नीचे आकर एक सुरीला संगीत पैदा कर रही थी। नीचे तक आते आते झरने का वेग इतना तेज हो जाता कि उसके नीचे नहाते हुए बदन चोटिल हो जाए। झरने के सफेद फेनिल पानी को जब दिव्या ने छुआ तो रोमांच से भर गई। झरने में दिव्या ने पूरे ग्रुप के साथ जी खोलकर मौज मस्ती की।
माल्शेज घाट की गगन छूती

ऊंची पहाड़ियों के खूबसूरत दृश्यों को दिव्या अपने मन में खूब गहराई तक बसा लेना चाहती थी। पहाड़ियों और घाटियों की अनगिनत तस्वीरें उसने अपने मोबाइल में कैद की। बाकी दोस्त जब पहाड़ों के और ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उस समय पेड़ों के झुरमुट की ढलान पर बैठकर दिव्या फटाफट कुछ वीडियोज ले रही थी और अपने मोबाइल में वर्ड फाइल खोलकर इस खूबसूरत नजारे का ब्यौरा टाइप कर रही थी। पत्तियों की सरसराहट, जुगलबंदी करती कूकती कोयल की तान रिकॉर्ड कर रही थी। दूर दिखते कचनार गुलमोहर के पेड़ों को जूम मोड पर अपने कैमरे में जीवंत कर रही थी। फूलों की वादियों से आती चंपा चमेली की खुशबू को अपने भीतर वो समो लेना चाहती थी। उस वक्त दिव्या की आंखें गुलाब से खिली थीं। टी टी करती टिटहरी का गान भी रिकॉर्ड कर रही थी। दिव्या इन वादियों में एक पंछी की तरह

0: ये फिजाएं दुला रही है तुम्हें।
1: गीतों भरी कहानी में आज आप सुन रहे थे ममता सिंह की लिखी कहानी यादों की तपिश का पहला भाग। स्वर था ममता सिंह का, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह और विविध भारती की ओर से इसे प्रस्तुत किया रमेश गोखले ने।

0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है।
3: आकाशवाणी विविध भारती केंद्रम निलयम समय 5 గంటలకు వస్తుంది. వార్తల ముఖ్యాంశాలు వింటారు.

0: नरेंद्र मोदी ने आज बहादुर भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार से बात की। कैप्टन स्मिथ मच्छार ने दुबई से तल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट में अपने सह पायलट के हमले को नाकाम करते हुए 180 लोगों की जान बचाई थी। प्रधानमंत्री ने उनकी बहादुरी की सराहना की और शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने श्री स्मिथ के जज्बे की सराहना करते हुए कहा कि देश गर्व से कह सकता है कि भारतीय वे नहीं हैं जो जान लेते हैं, बल्कि वे हैं जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार रहते हैं।
1: आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे हैं, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया, और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूँ।
0: कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया।

पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत की परिकल्पना में स्वच्छता सबसे महत्वपूर्ण है। श्री सोनोवाल ने महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर मुंबई पोर्ट अथॉरिटी के स्वच्छता अभियान संबंधी कार्यक्रम में ये बात कही। कार्यक्रम के दौरान मुंबई पोर्ट अथॉरिटी द्वारा संचालित जवाहर द्वीप मरीन ऑयल टर्मिनल को प्लास्टिक मुक्त ऑयल टर्मिनल घोषित किया गया। गोवा सरकार के सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत पोंडा में आत्मनिर्भरता, कृषि और महिला सशक्तिकरण की योजनाओं की जानकारी देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गोवा में लगभग 6000 लखपति दीदियों को आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक बागवानी केंद्र आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र में बागवानी को मजबूत करेगा और किसानों के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराएगा। श्रीमती सीतारामन ने आज अन्नामय्या जिले के मदनपल्ले में रायलसीमा वैश्विक बागवानी केंद्र परियोजना और भारतीय कृषि विद्यालय की आधारशिला रखी। वित्त मंत्री ने किसानों को सहयोग देने और उनकी आय बढ़ाने के लिए बेहतर जल प्रबंधन, आधुनिक प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे की आवश्यकता पर भी बल दिया। महाराष्ट्र निवेश शिखर सम्मेलन में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में 85 लाख करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्तावित निवेश से संबंधित 67 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। श्री फडणवीस ने राज्य को प्रमुख निवेश स्थल बनाने के उद्देश्य से इन्वेस्ट महाराष्ट्र मंच का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री को मिले उपहारों की ई नीलामी का 8वां चरण 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि इस चरण में दिल्ली के विभिन्न पहलुओं को दिखाने वाली 30 यादगार स्मृति चिन्ह शामिल हैं। इन 30 स्मृति चिन्हों में 9 फोटो फ्रेम, 9 यादगार वस्तुएं और 6 मूर्तियां तथा प्रतिमाएं शामिल हैं। जापान एशियाई खेलों में आज भारतीय महिला टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया। भारतीय पहलवान सुजीत कलकल ने पुरुषों के फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। पुरुष मुक्केबाजी के 80 किलोग्राम वर्ग में अंकुश पंघाल ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिला मुक्केबाजी के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन हुड्डा ने चीनी ताइपे की नियेन चिन चेन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना ना बोरगोहाइन ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। पदक तालिका में भारत 16 स्वर्ण, 25 रजत और 30-35 कांस्य सहित 76 पदक लेकर आगे है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पदक विजेता परवीन हुड्डा और सुजीत कलकल को उनकी जीत पर बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लम्हे प्रोग्राम विद मी योर आरजे चेतन। आजकल के तेजी से बदलते जीवन शैली और खान पान के तरीकों में हो रहे परिवर्तन के साथ साथ स्वास्थ्य समस्याएं भी बढ़ रही है। उच्च रक्तचाप और किडनी रोग जैसी समस्याएं इनमें से कुछ है जो गंभीरता से नजर

आ रही है। इस लम्हे प्रोग्राम में हम उच्च रक्तचाप और किडनी रोग के बारे में विस्तार से जानेंगे आपके आरजे चेतन से। यह हाइपरटेंशन किडनी डिजीज कारणों की चर्चा करेंगे और इनके प्रति उचित सचेतता फैलाने का प्रयास करेंगे। हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप भी कहा जाता है, एक आम स्वास्थ्य समस्या है जिसमें रक्तचाप का स्तर मानक से अधिक होता है। ये एक स्थिति है जो धीरे धीरे विकसित होती है और आमतौर पर लोगों को पहले से ही पता नहीं चलता है। अगर यह समस्या नियंत्रित नहीं हो जाती है तो ये दिल, दिमाग, किडनी और अन्य शरीर के अंगों को प्रभावित कर सकती है। उच्च रक्तचाप को अन्यथा हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है। यह वह बल है जो मानव रक्त वाहिकाओं की दीवारों के खिलाफ कार्य करता है। ये बीपी रक्त वाहिकाओं के प्रतिरोध पर निर्भर करता है और हृदय को कितना कठिन प्रदर्शन करना पड़ता है। हम में से ज्यादातर लोगों को ये समस्या होती है, लेकिन अनजाने में हम अपनी जिंदगी चला रहे होते। लेकिन अनुपचारित उच्च रक्तचाप से स्ट्रोक, हृदय रोग और कभी कभी मृत्यु हो सकती है। हाइपरटेंशन का मुख्य कारण अंतर्निहित चिकित्सा और मानसिक स्थितियों पर निर्भर करता है। ब्लड प्लाज्मा की मात्रा, हार्मोन गतिविधि, तनाव और गतिविधियों की कमी, क्रॉनिक किडनी रोग, डायबिटीज, ओबेसिटी, स्लीप एपनिया, गर्भावस्था या कुशिंग सिंड्रोम को उच्च रक्तचाप के मुख्य कारण माना जाते हैं। उच्च रक्तचाप को ठीक नहीं किया जा सकता है, ये एक क्रॉनिक बीमारी है और 90% रोगियों में उच्च रक्तचाप का कारण अज्ञात होता है। इसे दवा के साथ और जीवन शैली और खाने की आदतों में कुछ संशोधन के साथ नियंत्रित किया जा सकता है। इसे आमतौर पर नियमित चिकित्सा ध्यान देना है और अपने चिकित्सक के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई की आवश्यकता होती है। किडनी रोग एक और गंभीर स्वास्थ्य समस्या है जिसमें किडनी की क्षमता मामूला से कम हो जाती है और ये सही तरीके से काम नहीं कर पाती है। इसके परिणाम स्वरूप शरीर में विषैले पदार्थ जमा हो सकते हैं और विभिन्न स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इसके कारण ये है दोस्तों, खान पान की गलत आदतें, अधिक नमक, अल्कोहल और अधिक मात्रा में कैफीन का सेवन करने से उच्च रक्तचाप बढ़ सकता है जो बाद में किडनी के लिए भी हानिकारक हो सकता है। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। मानसिक तनाव और स्ट्रेस भी रक्तचाप में वृद्धि कर सकते हैं और किडनी के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। मधुमेह से पीड़ित लोगों में उच्च रक्तचाप और किडनी समस्याएं होने की संभावना बढ़ जाती है। रक्तचाप और किडनी समस्या आमतौर पर बढ़ती है अनियमित जीवन शैली, डिसऑर्डरली लाइफस्टाइल, अनियमित खानपान, व्यायाम की कमी और अत्यधिक वजन, ये सभी उच्च रक्तचाप और किडनी समस्याओं के लिए प्राथमिक कारण बन सकते हैं। दोस्तों, हाइपरटेंशन और किडनी डिजीज के कुछ लक्षण इस तरह हैं: बार बार पेशाब आना, पेशाब में रक्त आना, थकान, सिर दर्द, नजरों में धुंधलापन, पैरों और एंकल्स में सूजन। तो इसके लिए क्या करें? कम नमक खाएं, कम तेल और सुपर फूड्स का सेवन करें। फल, सब्जियां, पूरे अनाज, मखाने जैसे आहार उच्च रक्तचाप और किडनी स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। योग, ध्यान या साधारण सीखी गई व्यायाम आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुधार सकती है। प्रतिदिन 8 से 10 ग्लास पानी पीना महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये आपके रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है। नियमित चिकित्सकीय जांच और टेस्ट से आप अपने रक्तचाप और किडनी के स्वास्थ्य की निगरानी कर सकते हैं। उच्च रक्तचाप और किडनी रोग दोनों ही गंभीर स्वास्थ्य समस्या है जिनका समय पर पहचान और प्रबंधन महत्वपूर्ण है। स्वस्थ आहार, नियमित व्यायाम, सही खान पान आदतें बनाना और नियमित चिकित्सकीय जांच से हम इन समस्याओं से बच सकते हैं। साथ ही सचेतता फैलाने के लिए जन जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित करना चाहिए ताकि लोग इन समस्याओं की ओर ध्यान दें और सही समय पर कदम उठाएं। दोस्तों, आपके सुझाव

और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com।

उच्च रक्तचाप एक ऐसी स्थिति है जिसका सही समय पर इलाज किया जाना चाहिए। हालांकि कुछ प्राकृतिक उपचार उच्च रक्तचाप के लिए काम करेंगे, जैसे स्वस्थ बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स, नियमित व्यायाम, अतिरिक्त सोडियम को कम करना, चीनी और रिफाइंड कार्ब्स को कम करना, धूम्रपान बंद करना और शराब का सेवन कम करना। अन्य उपाय जैसे संतुलित आहार खाना, तनाव कम करना, सांस लेने का व्यायाम करना और अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान और योग करना, कैल्शियम और मैग्नीशियम युक्त भोजन का सेवन करना, प्राकृतिक सप्लीमेंट लेना। मुख्य रूप से प्राकृतिक उपचार खाते में गिना जाता है। तो दोस्तों, यह था हाइपरटेंशन और उसके असर अपने किडनी पर। इस प्रोग्राम का उद्देश्य केवल सूचना प्रदान करता है और यह किसी भी प्रकार की चिकित्सा सलाह की जगह नहीं ले सकता है। किसी भी स्वास्थ्य समस्या के लिए चिकित्सक से परामर्श करें। तो दोस्तों, आज के लम्हे प्रोग्राम में बस इतना ही। अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी आप सबसे। तब तक चेतन को दीजिए इजाजत। नमस्कार दोस्तों। आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। दिस प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाय एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।

0: ఆకాశవాణి వివిధ భారతి కేంద్రం నిలయంలో సమయం 9:15 వస్తుంది. ఉర్దూలో వార్తలు వింటారు.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं नीतिका त्यागी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बहादुर पायलट स्मित मच्छर की सैकड़ों जाने बचाने और इसराइल जाने वाली परवाज को तबाह करने की कोशिश नाकाम बनाने पर तारीफ की। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारतीय वो होते हैं जो दूसरों की जान नहीं लेते हैं बल्कि दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल देते हैं। तिजारत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आलमी सप्लाई चेन में एक काबिले एतमाद शराकत दार के तौर पर डिजाइन से लेकर तैयारशुदा अशिया तक मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन तश्कील दे रहा है। मुल्क ने बाबाए कौम महात्मा गांधी और साबिक वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री को उनके यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। और एशियाई खेलों में भारत ने 44 सालों में खवातीन हॉकी में सोने का पहला तमगा जीता। पहलवान सुजीत कलकल और मुक्केबाज प्रवीण हुड्डा, लोवलीना बोरगोहाइन और अंकुश पंडाल ने भी सोने के तमगे हासिल किए। भारत तमगों की फहरिस्त में 5वें मकाम पर पहुंच गया है। उसने तमगों की मजमू तादाद बढ़कर 76 हो गई, जिनमें सोने के 16 तमगे शामिल हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कैप्टन स्मित मच्छर से फोन पर बात की और इसराइल जाने वाली फ्लाई दुबई की परवाज को हाईजेक करने की कोशिश के दौरान उनकी बहादुरी और हाजिर दिमागी की तारीफ की। वजीर आजम ने कहा कि भारतीय वो लोग नहीं हैं जो दूसरों की जान लेते हैं बल्कि वो हैं जो दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डालने के लिए तैयार रहते हैं। उन्होंने कैप्टन मच्छर के उस फौरी फैसले को सराहा जिससे सैकड़ों मुसाफिरों की जान बचाने में मदद मिली।
2: आपकी हिम्मत ने, आपके धैर्य ने और आपकी सूझबूझ ने, यानी फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में इतने निर्णय कर लिए आपने और इतने लोगों की जान बचाई और आज पूरा देश गर्व से कह सकता है कि हम हिंदुस्तानी जान लेने वाले लोग नहीं।

0: हृदय से गर्व अनुभव करता हूं। मित्र, अब मैं आपसे सुनना चाहूंगा।
1: मेरे लिए मैं सर से भी बोल रहा था, आप मेरे सबसे बड़े एक्टर से और मेरे को ऐसे कॉल करके मेरी उम्र कर रहे, मुझे बहुत गर्व फील हो रहा है।
2: गुज़श्ता बुध के रोज कैप्टन मच्छर उस वक्त शदीद तौर पर जख्मी हो गए जब दुबई से तेल अवीव जाने वाली फ्लाई दुबई की परवाज के कॉकपिट में उनके साथी पायलट ने उन्हें छुरी मार दी। इस परवाज में 174 मुसाफिर सवार थे, जिनमें 27 बच्चे भी शामिल थे। पायलट इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात के एक अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने अमरीका के शहर मिलवॉकी में G20 वज़राए तिजारत की मीटिंग के इख्तितामी दिन आलमी तिजारत में पाई जाने वाली बेकायदगियों और अदम तवाजुन को दूर करने के लिए आलमी तिजारती तंजीम WTO के जाब्तों के मुताबिक तरीकाकार इख्तियार करने पर जोर दिया है। ढांचा जाति इजाफी सलाहियत और पैदावार के मौजू पर खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से तरक्की करने वाली बड़ी मईशत है और इसकी मईशत 140 करोड़ लोगों की जरूरियात पूरी करने वाली घरेलू मांग पर मबनी मईशत है। उन्होंने उजागर किया कि भारत आलमी सप्लाई चेन में एक काबिल एतमाद शराकत दार के तौर पर डिजाइन से लेकर तैयार मसनूआत तक मैन्युफैक्चरिंग का मुकम्मल वैल्यू चेन तैयार कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की पैदावारी सलाहियत उसकी घरेलू और आलमी दोनों जरूरियात पूरी करती है और G20 की सदारत के दौरान जिन शोबों की निशानदेही की गई है उनमें भारत को ढांचा जाति इजाफी पैदावारी सलाहियत का मसला दरपेश नहीं है। जनाब गोयल ने कहा कि भारत और कई रुकन मुल्कों को तशवीश है कि बाज मईशतों में गैर मुनसिफाना तौर पर असरअंदाज होने वाली सरकारी मदद से अशिया को गैर मामूली तौर पर कम कीमत पर बैरूने मुल्क फरोख्त करने और हरीफों को मार्केट से बाहर करने के लिए जानबूझकर इंतहाई कम कीमत मुकर्रर करने का रुझान पैदा हो सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसे खदशात से निमटने के लिए WTA के जाब्तों से हम आहंग इकदाम किए जाते हैं जिनमें डंपिंग मुखालिफ महसूल और इजाफी दरामदी महसूल शामिल हैं। G7 के रुकन ममालिक के रहनुमाओं ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक हंगामी मीटिंग का इनेकाद किया जिसमें आलमी सतह पर डीजल की सप्लाई, ईंधन की बढ़ती हुई कीमतों और अमरीका और यूरोप के दरमियान बढ़ती कशीदगी पर तबादला ख्याल किया गया। ये मीटिंग ऐसे वक्त में हो रही है जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह धमकी दी है कि अगर यूरोपीय ममालिक ने अपने स्ट्रेटेजिक जखायर से ईंधन जारी नहीं किया तो अमरीका डीजल की बरामदात रोक सकता है। इसके अलावा यूक्रेन के जरिए रूस की रिफाइनरीज को नुकसान पहुंचाने के बाद रूस ने डीजल की आमदात पर आयात पाबंदी में तौसी कर दी है जबकि चीनी रिफाइनरियों ने मुल्की जरूरियात के लिए डीजल की बरामदात मुअत्तल कर दी हैं। ये वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों ने बुलाई थी ताकि G7 ममालिक के रहनुमाओं को इस बात पर आमादा किया जा सके कि वो बरामदाती पाबंदियां आयद किए बगैर पेट्रोलियम मसनूआत की आलमी मंडी को मुस्तहकम करने के इकदाम कर सकें। यूरोपीय कमीशन के अहदेदारान ने डीजल की बरामदात पर अमरीका की मुजवजा पाबंदी को मुस्तरद करते हुए मुतनब्बे किया कि इससे काबिल एतमाद शराकत दार के तौर पर अमरीका पर एतमाद को नुकसान पहुंचेगा।
3: तिजारत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि G20 ममालिक के साथ भारत की तिजारत का इनहिसार एक शफाफ, गैर इम्तियाजी और कवायद पर मबनी तिजारती निजाम है। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा पसंदीदा मुल्क का दर्जा उस निजाम की एक अहम जमानत है जिसके तहत सबसे छोटे ताजिर और सबसे बड़े ताजिर के लिए यकसां शरायत लागू होती हैं। आलमी सप्लाई चेन में जबरी मशक्कत के खात्मे के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जबरी मशक्कत के खात्मे के लिए भारत का अज़्म कतई और गैर मशरूत है। वजीर मौसूफ ने एक बार फिर कवायद पर मबनी मुनसिफाना, मसावी, गैर इम्तियाजी, शफाफ, जामे और कसीर जहती तजारती निजाम के लिए भारत के अज़्म का इआदा किया। जनाब गोयल ने ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब और जनूबी कोरिया समेत मुतअद्दिद ममालिक के अपने हम मनसबों से मुलाकात भी की। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
2: मुल्क ने आज बाबा कौम महात्मा गांधी को उनके 157वें योम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया है।

कौमी राजधानी में राजघाट पर बापू की समाधि पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा यानी सभी मजाहिब के दुआया जलसे का एहतमाम किया गया। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह सर्वधर्म प्रार्थना में शिरकत की और बाबा कौम को गुलहाए अकीदत नजर किए। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन, वजीर आजम नरेन्द्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और दीगर रहनुमाओं ने भी राजघाट पर महात्मा गांधी को गुलहाए अकीदत नजर किए। नायब सदर और वजीर आजम ने आज शाम नई दिल्ली में गांधी स्मृति पर महात्मा गांधी को खिराज अकीदत पेश किया। प्रोग्राम के दौरान नाम

0: और गुलकारों के साथ साथ स्कूली तलबा ने रूहानी नगमे गाए। मुल्क ने आज साबिक वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री को उनके 122वें योम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। वो 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में पैदा हुए, जिसे पहले मुगल सराय कहा जाता था। नौउम्री में वो भारत की तहरीक आजादी में शामिल हुए और साल 1921 की अदम तावन तहरीक में हिस्सा लिया। आजादी के बाद लाल बहादुर शास्त्री ने उत्तर प्रदेश और उसके बाद मरकजी हुकूमत में कई अहम ओहदों पर खिदमात अंजाम दी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने साबिक वजीर आजम को आज सुबह कौमी राजधानी में वाकई उनकी यादगार विजय घाट पर गुलहाय अकीदत नजर किए। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अवामी खिदमत के 25 बरस मुकम्मल हो रहे हैं, जो जन सेवा से देश सेवा के मंत्र पर मबनी है और इस अंथक अजम का सिलसिला जारी है। सेवा और सुशासन के इस नजरिए के तहत हुकूमत साल 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने की खातिर अंथक काम कर रही है। आज अपनी खसूसी सीरीज में हम तذکرہ कर रहे हैं कि मन की बात के जरिए इस नजरिए को किस तरह अमली शक्ल दी गई है।
1: आकाशवाणी पर मन की बात माहाना रेडियो प्रोग्राम के तौर पर शुरू हुआ था। इसके आगाज के बाद से एक भी महीना ऐसा नहीं गुजरा जब ये प्रोग्राम नशर ना हुआ हो। ये कोई पॉलिसी से मुताल्लिक खिताब नहीं है। इस प्रोग्राम में आम लोगों के उन कामों को उजागर किया जाता है जो उन्होंने अच्छे तरीके से अंजाम दिए हों। इस प्रोग्राम के जरिए किसी सरकारी स्कीम को आम फहम जबान में समझाया जाता है और सफाई, सुथराई, पानी या खुद किफालत जैसे मामलात में आवाम से ताउन की अपील की जाती है। रेडियो उन लोगों तक भी पहुंचता है जहां कोई और जराए इबलाग नहीं पहुंच पाते हैं। इस प्रोग्राम ने मुल्क के आवाम से बातचीत का एक ऐसा अंदाज पैदा किया है जो ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस है और ना ही इंतखाबी मुहिम। अप्रैल 2023 में मन की बात के 100वें नशरिए के मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मन की बात में जिन मौजूदात या स्कीमों का अहाता किया गया वो अवामी तहरीक की शक्ल अख्तियार कर गईं।
2: मन की बात में पूरे देश के कोने कोने से लोग जुड़े, हर आयु वर्ग के लोग जुड़े। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो, स्वच्छ भारत आंदोलन हो, खादी के प्रति प्रेम हो या प्रकृति की बात, आजादी का अमृत महोत्सव हो या फिर अमृत सरोवर की बात, मन की बात जिस विषय से जुड़ा वो जन आंदोलन बन गया और आप लोगों ने बना दिया।
1: मीडिया से बात करते हुए लखनऊ के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले सामेईन ने कहा कि मन की बात प्रोग्राम के जरिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बहुत कुछ आवाम तक पहुंचाया है।
3: प्रधानमंत्री जी ने जो भी पहल की है देश के हित में की है, तो हमें उससे भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि एक घर का गार्जियन जैसे परिवार का गार्जियन को समझाना चाहिए। आप भारत का प्रधानमंत्री हमें समझा रहा है तो हमें उस पर अमल करना चाहिए।
4: देश में बहुत लंबे समय बाद रेडियो की उपयोगिता बढ़ी है। प्रधानमंत्री जी ने रेडियो के माध्यम से अपना संदेश गांव के उन नौजवानों तक पहुंचाया जो इस सूचना प्रौद्योगिकी के दौर में पिछड़ गए थे और उनकी बात वो कर रहे हैं।
1: मीडिया से बात करते हुए मारूफ अदाकार आमिर खान ने कहा कि मन की बात प्रोग्राम ने लोगों को काफी मुतासिर किया है। आज करोड़ों भारतीय वजीर आजम के खिताब को सुनते हैं और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से सामने आने वाली हुक्मरानी की कामयाबियों की कहानियां सुनते हैं। उमंगों वाला भारत, बदलती हुई हकीकतों की दास्तानें गहरी दिलचस्पी और जुस्तुजू के साथ सुनता है। नई दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीर।
0: भारतीय मौसमियात महकमे आईएमडी ने आइंदा 2 दिन के दौरान अरुणाचल प्रदेश में शदीद बारिश होने की पेशगोई की है। आईएमडी ने कहा है कि इस महीने की 5 तारीख तक तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, आंध्र प्रदेश, केरलम और माहे में गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। बरतानवी भारतीय शतरंज खिलाड़ी बोधना सिवानंदन के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की जानिब से खवातीन का ग्रैंड मास्टर खिताब WGM जीतने वाली सबसे कम उम्र खिलाड़ी होने का एतराफ किया गया है। इस 11 साल स्कूली तालिबा ने समरकंद उज़्बेकिस्तान में मुनक़िद 46वें शतरंज ओलंपियाड को जीतकर तारीख रकम की थी, जिससे वो बावकार WGM खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र खिलाड़ी बन गई थीं। भारत की सरकर्दा ट्रैप शूटर नीरू ढांडा इतवार को आईजी नागोया में होने वाली एशियाई खेलों की इख्तितामी तकरीब में भारत की खवातीन परचम बरदार होंगी। जापान के आईची नागोया में जारी एशियाई खेलों में सोने के तमगे जीतने का सिलसिला जारी है। खेल के 13वें दिन भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए हॉकी, मुक्केबाजी, कश्ती कुश्ती और तीरंदाजी में 6 सोने के तमगे हासिल किए और अपनी महारत, अज्म

0: और खेल के आला मेयार का मुजाहिरा किया। खवातीन हॉकी के फाइनल में भारतीय टीम ने सख्त मुकाबले में दिफाई चैंपियन चीन को 0 के मुकाबले 1 से शिकस्त देकर सोने का तमगा जीता। लाल रेमेम सियामी ने भारत की जानिब से फैसलाकुन वाहिद गोल किया, जबकि गोलकीपर सविता पूनिया ने पेनल्टी स्ट्रोक का बचाव करते हुए भारत की बढ़तरी बरकरार रखी और सोने का तमगा जीता। एशियाई खेलों में भारतीय खवातीन हॉकी टीम ने 44 सालों के लंबे इंतजार के बाद पहला सोने का तमगा हासिल किया है। इसके साथ ही भारतीय खवातीन हॉकी टीम ने 2028 के लॉस एंजलिस में होने वाले ओलंपिक्स खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इससे पहले भारतीय पहलवान सुजीत कलकल ने 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल मुकाबले में शानदार वापसी करते हुए सोने का तमगा जीता। मर्दों के 80 किलोग्राम जुमरे के फाइनल में अंकुश पंघल ने जनूबी कोरिया के किम मिन सियोंग को 4-0 से हराकर सोने का तमगा जीता। भारतीय खातून मुक्केबाज लवलीना बोरगोहाइन ने 75 किलोग्राम जुमरे के फाइनल में चीन की खिलाड़ी को हराकर जीत हासिल की। इसके साथ ही तमगे की फहरिस्त में भारत 5वें नंबर पर पहुंच गया है। भारत के तमगों की तादाद बढ़कर 76 हो गई है, जिसमें सोने के 16, चांदी के 25 और कांसे के 35 तमगे शामिल हैं। और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बहादुर पायलट स्मिथ मच्छर की सैकड़ों जाने बचाने और इसराइल जाने वाली परवाज को तबाह करने की कोशिश नाकाम बनाने पर तारीफ की। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारतीय वो होते हैं जो दूसरों की जान नहीं लेते हैं, बल्कि दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल देते हैं। तिजारत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आलमी सप्लाई चेन में एक काबिल एतमाद शराकतदार के तौर पर डिजाइन से लेकर तैयारशुदा अशिया तक मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन तश्कील दे रहा है। मुल्क ने बाबाए कौम महात्मा गांधी और साबिक वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री को उनके यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। और एशियाई खेलों में भारत ने 44 सालों में खवातीन हॉकी में सोने का पहला तमगा जीता। एशियाई खेलों में भारत तमगों की फहरिस्त में 5वें मकाम पर पहुंच गया है। इसके तमगों की मजमूई तादाद बढ़कर 76 हो गई है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ఆకాశవాణి వివిధ భారతి కేంద్రం నిలయంలో సమయం 9 గంటలు దాటి 30 నిమిషాలు. ముంబై నుంచి వివిధ భారతి ప్రసారాలు రిలే వింటారు.

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है।
0: हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए।
1: आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा, ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ आ आ होता है। और एक दिन मैं ये आ आ आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपने गाड़ी में बैठ के, ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मीन साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या, क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा, नहीं नहीं तू गाड़ी चला।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

एक ऐसी अभिनेत्री का जिक्र है जिन्होंने 1960 और 70 के दशक में हिंदी सिनेमा को अपनी खूबसूरती और अभिनय से पर्दे में एक चमक पैदा की, उसे रोशन किया। ये दो दशकों तक सबसे चर्चित और हिंदी फिल्मों की सफलतम नायिका रहीं। भारतीय सिनेमा में इनके योगदान के लिए भारत सरकार ने इन्हें 1992 में पद्मश्री से सम्मानित किया।

अभिनेत्री आशा पारेख का जन्म 2 अक्टूबर 1942 को हुआ। आशा पारेख के माताजी ने इन्हें शास्त्रीय नृत्य सीखने के लिए बहुत ही कम उम्र में भेजना शुरू कर दिया था और आपने कई गुरुओं से नृत्य सीखा जिसमें पंडित बंसीलाल भारती भी शामिल हैं। जहां तक आशा पारेख के फिल्मी करियर की शुरुआत की बात है तो आपने बेबी आशा पारेख के नाम से सन 1952 की बिमल रॉय की फिल्म माँ से शुरुआत की। फिल्म में लेने के पहले इस निर्देशक ने एक मंचीय कार्यक्रम में नृत्य करते देखा था और फिर एक बाल कलाकार के रूप में बेबी आशा को फिल्म में लिया। फिर दोबारा 1954 की फिल्म बाप बेटी फिल्म के लिए भी बेबी आशा को आपने अनुबंधित किया था। बाद की फिल्मों की असफलता ने बेबी आशा को दुखी कर दिया। बाल कलाकार के रूप में आपने कुछ एक और फिल्में भी की जिसकी वजह से इनको स्कूली शिक्षा त्यागनी पड़ी। आशा पारेख की उम्र 16 रही होगी जब इन्होंने दोबारा अभिनय के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा आजमाने की सोची। पर सन 1959 की विजय भट्ट की फिल्म गूंज उठी शहनाई में नायिका के रूप में आप नहीं चुनी गई। इनकी जगह अभिनेत्री अमिता ने वो भूमिका निभाई थी। आशा पारेख को फिल्मकार ने यह कहकर रिजेक्ट किया था कि इनमें स्टार मटेरियल नहीं है, जबकि 8 दिनों बाद ही निर्माता सुबोध मुखर्जी और लेखक निर्देशक नासिर हुसैन ने आशा पारेख को हीरोइन के रूप में 1959 की फिल्म दिल दे के देखो में शम्मी कपूर के साथ कास्ट किया और ये फिल्म सफल रही और आशा पारेख को इस फिल्म ने स्टार बना दिया।

दिल दे के देखो की सफलता ने फिल्मकार नासिर हुसैन और आशा पारेख की जोड़ी बना दी, जिससे इन्होंने साथ साथ 6 फिल्में की जो काफी सफल रही। ये फिल्में हैं 1961 की देवानंद के साथ जब प्यार किसी से होता है।

सन 1966 की विजय आनंद द्वारा निर्मित म्यूजिकल थ्रिलर जिसके निर्माता थे नासिर हुसैन। फिल्म थी तीसरी मंजिल।

0: और फिर 1971 में आई आशा पारेख और जितेंद्र की ताहिर हुसैन द्वारा निर्मित, नासिर हुसैन द्वारा लिखित निर्देशित फिल्म कारवां। और फिर सन 1984 की मंजिल मंजिल में आशा पारेख ने एक केमियो रोल किया था। लेकिन इन छह फिल्मों ने जहां नासिर हुसैन और आशा पारेख की फिल्मी केमिस्ट्री को सफल बनाया, वहीं हिंदी सिनेमा को भी कलात्मक ढंग से परिष्कृत किया, असरदार बनाया।
1: कितना प्यारा वादा है इन मतवाली आंखों का, इस मस्ती में सूझे ना क्या कर डालूं हाल, मुझे संभाल।

हिट फिल्मों की हिट नायिका, जिन्हें हम आशा पारेख कहते हैं, फिल्मालय स्टूडियो की शशधर मुखर्जी द्वारा निर्मित निर्देशित दिल देके देखो से फिल्म दर्शकों और समीक्षकों ने मान लिया कि अ स्टार इज बॉर्न। बात की सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली फिल्मों ने इन्हें सर्वोत्कृष्ट हिट गर्ल के रूप में स्थापित किया। इसी नाम से आशा पारेख ने अपनी ऑटोबायोग्राफी खालिद मोहम्मद के साथ मिलकर लिखी द हिट गर्ल।

बचपन से ही सीखी नृत्य कला इनकी अभिनय ख्याति को देश विदेश में बढ़ाने में सहायक रही। अभिनय के अलावा आशा पारेख अपने सामाजिक उत्थान के कार्यों के लिए भी जानी जाती है। 1988 से 2001 तक सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन सेंसर बोर्ड की आप अध्यक्ष रहीं, सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन से भी आप संबद्ध रहीं और फिल्म इंडस्ट्री वर्कर्स, टेक्नीशियन और एक्टर्स के हितों की रक्षा के लिए बने संगठनों से भी आप जुड़ी रहीं। बाद के वर्षों में आप टीवी के कोरा कागज और पलाश के फूल जैसे धारावाहिक की निर्माता निर्देशक भी बनी। चलिए इन बातों के बाद अब फिर से चलते हैं हिट गर्ल की उन फिल्मों की ओर जिसमें आशा पारेख ने ग्लैमर गर्ल, उत्कृष्ट नृत्यांगना और टॉम बॉय जैसे किरदारों को बखूबी निभाया था। शक्ति सामंत की फिल्म पगला कहीं का में आशा पारेख ने डॉक्टर शालिनी का किरदार निभाया था।

1971 की म्यूजिकल ड्रामा फिल्म कटी पतंग में आपने काम किया, जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। आशा पारेख की जिद्दी फिल्म भी काफी मशहूर रही और जिसमें ये गाना उनका काफी मशहूर रहा।

कई निर्माता निर्देशकों ने कई बार आशा पारीख को अपनी फिल्म में कास्ट किया, जिसमें विजय आनंद और मोहन सहगल प्रमुख हैं। अपने हिंदी फिल्मी करियर की सफलता के दौर में आशा पारीख ने अपनी मातृभाषा गुजराती में भी फिल्में की, जिसमें 1963 की फिल्म अखंड सौभाग्यवती बड़ी हिट फिल्म थी। पंजाबी और कन्नड़ फिल्मों में भी आपने अभिनय किया। हिंदी की आन मिलो सजना इनकी कई लोकप्रिय फिल्मों में से एक रही।

दो बदन 1966 की, 1969 की चिराग, 1978 की मैं तुलसी तेरे आंगन की जैसी फिल्मों में आपके अभिनय को काफी सराहा गया। फिल्म भरोसा, आए दिन बहार के, उपकार, शिकार, कन्यादान, आया सावन झूम के जैसी 60 के दशक की फिल्में आशा पारेख के अभिनय से सजी थी।

मेरा गांव मेरा देश 1971 की एक्शन ड्रामा फिल्म जिसे निर्देशित किया था राज खोसला ने, नायक धर्मेंद्र के साथ आशा पारेख की ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इस फिल्म में जहां आशा पारेख अंजू बनी थी, वहीं विनोद खन्ना ने डाकू जब्बर सिंह का रोल अदा किया था। इस फिल्म के गीतों ने भी धूम मचाई थी।

फिल्म नादान, समाधि, राखी और हथकड़ी, हीरा, अनजान राहें, रानी और लाल परी, जख्मी, उधार का सिंदूर जैसी फिल्मों के साथ साथ 1970 के दशक में आई आशा पारेख अभिनीत फिल्म मैं तुलसी तेरे आंगन की में एक कुलीन ठाकुर राजनाथ सिंह चौहान के प्रेम तुलसी का किरदार आपने निभाया था, जिसमें राजनाथ के बेटे अजय को जन्म देने के बाद तुलसी अपना जीवन राजनाथ की पत्नी के लिए बलिदान कर देती है।

सन 1980 के दशक में बिन फेरे हम तेरे, सौ दिन सास के, बुलंदी, कालिया, हथियार और बंटवारा जैसी फिल्में और फिर 1990 के दशक में प्रोफेसर के पड़ोसन, भाग्यवान और 1994 की घर की इज्जत और 1995 की आंदोलन। 1995 के बाद से ही आशा पारेख ने फिल्मों में अभिनय करना बंद कर दिया, फिर कुछ काम टीवी के लिए किया। वर्तमान में आप अपनी डांस एकेडमी और सांताक्रूज में स्थित आशा पारेख हॉस्पिटल पर ध्यान दे रही हैं। जाहिर है अपनी उपलब्धियों की, सम्मानों की, फिल्मों की, अनुभवों की और यादों की

साथ अपनी आप निजी जिंदगी जी रही हैं अपने ढंग से, जो कि महत्वपूर्ण है। लेकिन जहां तक फिल्मी दर्शकों की बात है, आशा पारिख जी के फैंस की बात है, तो आशा जी आज भी उनके लिए द हिट गर्ल है।

0: आज के फनकार, ये कार्यक्रम केंद्रित था आशा पारेख पर, आलेख और स्वर जी श्याम का, और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।